मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आश्विन मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 6 अक्टूबर सन 2026। इस समय प्रातः के 5:55 और 49 सेकंड हुए हैं। आरंभ हो रही है आज की प्रातःकालीन सभा।

आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। दिव्य, जीवंत और मनमोहक प्रातः की सुंदर आभा, नए दिन की शुरुआत के साथ साथ पूरे वातावरण में एक नई ऊर्जा का संचार भर रही है। हवा में घुली फूलों की भीनी भीनी सुगंध, घास पर चमकती मोतियों सी बूंदें ताजगी और मांगलिकता का एहसास करा रहे हैं। नए उल्लास, नई उमंग के साथ श्रोताओं, हम भी आ चुके हैं स्टूडियो लेकर आपके लिए मॉर्निंग प्रोग्राम।

सुबह की दिनचर्या के साथ और हाथ में एक कप चाय का लिए आपने अपना रेडियो सेट ऑन कर लिया है और इंतजार है देश दुनिया की खबरों को जानने का। तो देर कैसी, चलते हैं दिल्ली स्टूडियो। प्रातः के 6 बजने ही वाले हैं, सुन लेते हैं समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: राष्ट्रपति पाहमला ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पाहमला का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि हो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एल के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एरो इंजन के हस्तांतरण कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये कार्यक्रम HAL कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को दर्शाएगा। देश की एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा बलों को भी सामने रखा जाएगा। रक्षा मंत्री आज विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-1 का जलावतरण करेंगे और फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-5 की आधारशिला रखेंगे। वे उन्नत स्लीप वे 4 और 300 टन क्षमता वाली गोलियथ क्रेन का भी उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से घाना की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। घाना के विदेश मंत्री सैमुअल ओकुडजेटो अब्लाकवा के निमंत्रण पर होने वाली इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज मतदान होगा। विधानसभा की 5 सीटों में तमिलनाडु की मधुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टान चावड़ी और पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीट शामिल है। असम की नागांव लोकसभा सीट पर भी आज मतदान होगा। मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव

चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को उम्मीदवार बनाया है। इन नामों को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने मंजूरी दी है। द्विवार्षिक राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में राज्यसभा सीटों के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। 747 किलो हर्ट्ज पर आपने अपना रेडियो सेट ट्यून इन किया है। आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों का प्रसारण आप सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH के माध्यम से भी। श्रोताओं, सुबह के 6:05 का समय है और ये समय होता है कृषि चर्चा कार्यक्रम का। आज की कृषि चर्चा में हमारे किसान भाई जानकारी प्राप्त करें फलदार वृक्षों में कृषि रक्षा कार्य विषय पर। डॉक्टर ज्ञान प्रकाश सिंह से इस विषय पर बातचीत की है डॉक्टर सुशील कुमार राय ने।
1: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, फलदार वृक्षों की व्यावसायिक बागवानी जहां आप कर रहे हैं वहाँ हानिकारक कीट और बीमारियों के चलते कुछ नुकसान होता है जिससे आपको वांछित लाभ नहीं मिलता है, तो इन हानिकारक कीट और बीमारियों का प्रबंधन इस समय कैसे करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं संयुक्त निदेशक डॉक्टर GP सिंह साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जो भी फलदार वृक्ष इस समय बागों में हैं तो उनमें हानिकारक कीट और बीमारियों का प्रबंधन कैसे करें बागवान भाई बहन?
2: नमस्कार किसान भाइयों, इस समय किसान भाई जैसे हमारा अमरूद की खेती किसान भाई कर रहे हैं, जैसे आप देखें कि आज का जो हमारा अमरूद की फसल आ रही है उसमें सबसे पहले किसान भाई देखते हैं कि उसमें एक डांसी मक्खी का प्रकोप जो है सबसे ज्यादा दिखाई देता है। उसमें किसान भाई जब देखते हैं कि पहले उनका अमरूद जो है देखने में अच्छा दिखता है, लेकिन जब उसको हम काटते हैं तब अंदर में देखते हैं तो छोटी छोटी कीड़ी जो है उसमें दिखाई देती है। तो ये जो कीड़ी होती है, ये जो डांसी मक्खी होती है, उसी डांसी मक्खी का जो है छोटा मैगट, इसको लार्वा हम लोग बोलते हैं।
1: कि क्या फल मक्खी है क्या?
2: हाँ, फल मक्खी भी इसको बोलते हैं, इसको किसान भाई डांसी मक्खी या फल मक्खी भी बोलते हैं। तो इसको क्या होता है कि हमारे जैसे बहुत सारे किसान भाई हैं जैसे एडवांस जो है थाई गुआवा का खेती कर रहे हैं अमरूद की जो है, तो वो लोग क्या काम करते हैं उसमें कम फल लेते हैं, तो क्या बैगिंग कर देते हैं इसे बचने के लिए जो शुरू में ही। लेकिन जो हमारे उन्नाव का बेल्ट है या इलाहाबाद का है, तो यहाँ पे जो किसान भाई अमरूद की खेती करते हैं तो उसमें जो प्रबंधन के लिए किसान भाई क्या काम करते हैं कि इसका मिथाइल यूजिनाल का ट्रैप लगाते हैं
1: जी।
2: तो जब उनके अमरूद की साइज थोड़ा सा मटर से थोड़ा बड़ी हो जाती है तभी किसान भाई क्या है उसमें जो आपका 8 से 10 ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से किसान भाई लगाते हैं,
1: यानी लुभावना चारा। एक
2: लुभावना चारा है। इसमें लुभावने चारे में क्या होता है कि इसमें इथेनॉल एक केमिकल होता है और प्लस मिथाइल यूजिनॉल होता है और एक मैलाथियन जो है जहर होता है, इसको मिला करके हम लोग जो है इसको जो रेशियो होता है, कहने का मतलब अनुपात जो होता है 6:4 और 2 के अनुपात में जो है बना करके इसमें चाहे लकड़ी का गुटका डुबो देते हैं या कोई जो है रस्सी होती है हमारी जो सूती रस्सी होती है मोटी
1: जी, जी।
2: उसको हम 48 से 72 घंटे अगर हम उसमें डुबो देते हैं, फिर उसके बाद में क्या है कि कोई भी हम अपना ले लेते हैं, चाहे ट्रैप खरीद लेंगे मार्केट से, नहीं तो किसान भाई क्या है कि जो पानी की बोतल आती है उसमें 4 छेद कर देते हैं आमने सामने
1: जी।
2: और उसी में अगर इसको लटका देंगे जो है, तो इससे किसान भाइयों को कहने का मतलब देसी तरीके से बहुत ही अच्छी जो डासी मक्खी या फल मक्खी का कहने के मतलब किसान भाई प्रबंधन कर सकते हैं। एक बात का ध्यान देना है कि जो इसमें कहने का मतलब कि उसमें वो लगाएंगे लुभावना ट्रैप कैप्सूल उसमें, इसको हर 1 महीने के बाद में उसको चेंज करना पड़ेगा, अच्छा काम करेगा।
1: तो अगर नुकसान का स्तर अधिक है फल मक्खी का
2: जी,
1: तो उसका क्या सुरक्षात्मक छिड़काव भी कर सकते हैं?
2: छिड़काव तो हम नहीं इसमें रिकमेंड करेंगे किसान भाई, क्योंकि क्या होता है कि जो अमरूद का फल रहता है बीच बीच में पकता रहता है, किसान भाई उसको तोड़ते रहते हैं मार्केट में बेचते रहते हैं, और जहरीले रसायनों का जो प्रभाव होता है वो ज्यादा दिन होता है, तो जो भी अगर हम लोग खाएंगे या जो भी उसको मार्केट में लोग खाएंगे उसे तमाम तरीके की उनको बीमारियां होती हैं। फ्रूट फ्लाई का या इसका डांसी मक्खी का प्रकोप हो गया है
1: तो उसको इकट्ठा करके
2: नीचे जमीन में अगर दफना देंगे तो कहने का मतलब फिर उनको आगे कोई छिड़काव की जरूरत नहीं पड़ेगी।
1: डॉक्टर साहब, अमरूद की बागवानी में एक समस्या और है उकठा की
2: जी,
1: तो इसका कारण क्या है, लक्षण क्या है और इसका प्रबंधन बागवान भाई बहन कैसे करें?
2: तो इसमें क्या होता है कि जो उकठा बीमारी लगती है, ये फफूंदी होता है उसकी वजह से लगती है।

0: तो इसमें किसान भाई क्या काम करते हैं कि अगर पहली बात तो जो उनकी अमरूद की बागवानी उसमें ज्यादा सिंचाई नहीं करना चाहिए, कहने का मतलब हल्की सिंचाई करनी चाहिए, और दूसरा ड्रिप इरिगेशन अगर हो तो और भी अच्छा है। इसमें क्या होता है कि किसान भाई देखेंगे कि जो अमरूद का उनका जो बाग है उसमें शुरू में क्या होगा कि ऊपर पत्तियां पहले हल्का सा मुरझाती हैं, हल्का लाल पड़ के फिर जो है नीचे गिर जाती हैं, और डंठल क्या ऊपर से सूखने लगता है, और साथ में कि उसमें जड़ जो है अगर उठा के देखेंगे तो जड़ में हड़का सड़न उनको महसूस होती है, और जब जड़ को उसको फाड़ के देखते हैं तो उसमें काले काले रंग की धारी दिखाई देती है। तो इससे किसान भाइयों को पता चल जाता है ये उठा बीमारी से जो है ग्रसित पौधा है। तो जो पौधा ग्रसित है तो उसको तो तुरंत वहां से हटा देना चाहिए, हटा करके कहने का मतलब वहां से बाग से, ताकि इन्फेक्शन और न फैले। और क्या है कि जो किसान भाई बाग उनकी है उसको क्या है ट्राइकोडर्मा नाम का एक हमारा जैविक फफूंदी नाशक है, उसके द्वारा किसान भाई जो 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा और 50 से 60 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद में अच्छी तरीके से उसमें मिला दें, और मिलाने के बाद में उसमें जो पौधे के 1.5 से 2 फीट छोड़ करके उसमें मिला करके अच्छी से जो नमी खेत में
1: थाले में,
0: हाँ थाले में उसकी अगर गुड़ाई कर देते हैं तो इससे उनको बहुत फायदा।
1: और हल्की सिंचाई भी करनी होगी,
0: हाँ नमी होनी चाहिए, बिना नमी के बाद में ही उसको डालना है, अगर नमी रहेगी तो बहुत अच्छा फायदा इससे किसान भाइयों को होगा।
1: डॉक्टर जीपी सिंह साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और फलदार वृक्षों में कीट रोग प्रबंधन कैसे करें बागवान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: फलदार वृक्षों में कृषि रक्षा कार्य, इस विषय पर अभी हमारे किसान भाई जानकारी प्राप्त कर रहे थे। आज की कृषि चर्चा में डॉक्टर ज्ञान प्रकाश सिंह से बातचीत कर रहे थे डॉक्टर सुशील कुमार राय। हम मनुष्यों के भीतर अपार शक्ति, ऊर्जा और चेतना छिपी होती है। शारीरिक शक्ति से कहीं बढ़कर मानसिक शक्ति होती है। जब मन, बुद्धि और आत्मा एक दिशा में चलते हैं तब हम मनुष्य अपनी वास्तविक शक्ति का अनुभव कर पाते हैं। आइए सुनते हैं आज का सुविचार, मनुष्य की शक्ति का जागरण। वाचन स्वर है संत कुमार वर्मा का।
3: मानव जीवन अनंत शक्तियों का भंडार है। तन की शक्ति, मन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, प्राणों की शक्ति तथा आत्मा की शक्ति, इंद्रियों की शक्ति, विचार की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, विवेक की शक्ति, इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति, वाणी शक्ति आदि आदि अनेकानेक वरदान ईश्वर ने इस मानव जीवन के साथ सभी को दिया है। इसके साथ ही साथ धन की शक्ति और सत्ता की शक्ति, भौतिक साधन भी उपलब्ध कराए हैं। यदि इन्हें सही रूप में नहीं पहचाना गया तथा सही दिशा में नहीं नियोजित किया गया तो जीवन की कोई सार्थकता सिद्ध नहीं हो सकती। इस प्रकार ये अलभ्य जीवन आत्मज्ञान के अभाव में व्यर्थ ही चला जाएगा। तन की शक्ति का बड़ा महत्व है, आवश्यकता है कि इसे कैसे स्वस्थ रखा जाए और कैसे इस शक्ति का उत्तम सदुपयोग किया जाए तथा आत्मनिर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण व राष्ट्र निर्माण में इन्हें कैसे नियोजित किया जाए। प्रथम आवश्यकता है कि शरीर स्वस्थ रहे, तभी तो अर्थ, धर्म, अर्थोपार्जन, परोपकार व राष्ट्र निर्माण जैसे उद्देश्य पूरे हो सकते हैं। परिश्रम शरीर का पहला धर्म है। इच्छित लाभ परिश्रम व पुरुषार्थ से ही प्राप्त हो सकते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए परिश्रम, सात्विक भोजन, सात्विक चिंतन तथा नशा व मान से रक्षा, योग, प्राणायाम, आसन, नियमित व संयमित जीवनचर्या, आहार विहार व विचार, ध्यान साधना, उपासना, सत्संग, स्वाध्याय, उत्तम संगति आदि का बड़ा योगदान है। स्वस्थ शरीर से ही धनोपार्जन संभव है तथा उपार्जित धन का संयमपूर्ण सदुपयोग तथा अनावश्यक व्यय की प्रवृत्ति पर लगाम लगाना भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अन्याय व अनुचित तरीके से उपार्जित धन पाप, हिंसा, उत्पीड़न, व्यसनों व विलासिता तथा ठाठ बाट में ही खर्च हो जाता है। प्रायः देखा जाता है कि इन ईश्वर प्रदत्त शक्तियों व भौतिक शक्तियों का एक अंश, लगभग एक अंश ही मनुष्य प्राप्त कर पाता है और मुश्किल से 5 से 7% तक ही उसका उपयोग कर पाता है। शेष शक्तियां व्यर्थ चली जाती हैं। यदि और अधिक इनका उपयोग हो सके तो वह मानव से महामानव, नर से नारायण बनने की क्षमता रखता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। जब मन स्वच्छ स्वस्थ होगा तो कुविचारों तथा विषय वासनाओं से दूर रहता है तथा शेष चिंतन व उत्कृष्ट आचरण की ओर उन्मुख होता है। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति ही कल्पवृक्ष की तरह फलदायी होती है। श्रेष्ठ बुद्धि, चिंतन में नियोजित हो तथा हमारे निर्णय बौद्धिक हो तो जीवन में अद्भुत सफलताएं मिलती हैं। प्राण शक्ति प्रबल हो, निर्णय में

0: पुख्ता हो तथा आत्मबल मजबूत हो तो जीवन में कौन सा कार्य दुष्कर हो सकेगा। आत्मा में दया, करुणा, प्रेम, सदाचार, संवेदना व आत्मीयता से ईश्वर निष्ठा प्रगाढ़ होती है। फलस्वरूप जीवन में स्वर्गीय परिस्थितियाँ विकसित होती हैं और आत्मा में आनंद की अनुभूति प्रकट होने लगती है, जो जीते जी मुक्त की संभावनाओं के द्वार खोल देती है। इस प्रकार स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन, कुशाग्र बुद्ध, प्रखर प्राण व निर्मल आत्मा का योग यदि स्थापित किया जा सके तो जीवन सफल, सार्थक, सुमंगल व दिव्य बनाना निश्चित है। 5 कोश बड़े खजाने हमारे अंदर में हैं, जिन्हें हम आध्यात्मिक भाषा में अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, प्राणमय कोश व आनंदमय कोश के नाम से जानते हैं। इन कोशों के जागृत होते ही आत्मस्वरूप का ज्ञान होने लगता है तथा इसके उत्तम सदुपयोग से विकार व दोष दुर्गुणों का क्षरण होता है और जीवन दिव्य बनने लगता है।
1: मनुष्य की शक्ति का जागरण, अभी आप सुन रहे थे आज का ये। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ वैशाली के साथ। और अब आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

माँ की शक्ति की महिमा अनंत है। संगीत की हर धुन में माँ का ही नाम है, हर सांस की लय में माँ का ही धाम है। गांव की चौपाल से लेकर नगर की गलियों तक जहाँ जहाँ माँ का नाम लिया वहाँ वहाँ सुख समृद्धि बही।

जहाँ प्रभु के लिए मन में अटूट विश्वास होता है, वहाँ रास्ते अपने आप बन जाते हैं। हनुमान जी की भक्ति शक्ति, समर्पण, साहस और मानसिक शांति का प्रतीक है, जो असंभव को भी संभव बना देती है।

मर्यादा, सत्य, धर्म और प्रेम के आदर्श का रूप लिए प्रभु श्री राम, जिनकी भक्ति में अपार शक्ति है और पावन नाम के स्मरण मात्र से ही हृदय को असीम शांति मिलती है। आइए प्रभु श्री राम का सुमिरन करें।

अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून इन किया है 747 किलो हर्ट्स और सुन रहे हैं आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। प्रोग्राम चल रहा है नमस्ते लखनऊ। और अब आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। आज सुनेंगे भाग 315 में अपने बल का आभास देने के लिए सभा में अपने पैर रोपने और अनेक योद्धाओं समेत रावण द्वारा उसे हिलाने के असफल प्रयत्न का प्रसंग।

अपने बल का आभास देने के लिए रावण की सभा में अंगद ने पृथ्वी पर जो पैर रोपा तो मेघनाथ समेत अनेक योद्धाओं ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, परंतु उसे हिला तक नहीं सके। ये देख स्वयं रावण उठ खड़ा हुआ। जैसे ही वो अंगद का पैर पकड़ने लगा, अंगद बोल पड़े, अरे मूढ़, मेरा चरण पकड़ने में तेरा कल्याण नहीं, जाकर श्री राम के चरण पकड़। पल भर में रावण के दंभपूर्ण मुखमंडल से कांति विलुप्त हो गई। सकुचाकर वो सिंहासन पर वापस जा बैठा। उसका मुख वैसे ही निस्तेज हो गया जैसे सूर्य के प्रकाश में चंद्रमा का प्रकाश लुप्त

जैसे सूर्य के प्रकाश में चंद्रमा का प्रकाश लुप्त हो जाता है। पार्वती को ये वृत्तांत सुनाते हुए शिवजी कहते हैं, हे उमा, जिन प्रभु के भौहों के संकेत मात्र से विश्व की रचना और विनाश होता है, जो एक तिनके को वज्र के समान कठोर और वज्र को तिनके के समान नगण्य बना देते हैं, उनके दूत के प्रण और निश्चय को भला कौन डिगा सकता है। अंगद ने एक बार फिर नीतिपूर्ण वचन कहकर रावण को सद्बुद्धि देनी चाहिए, किंतु उसका कोई प्रभाव न होता देख रणभूमि में उसका वध करने की धमकी देकर श्री राम के शिविर में वापस लौट गए। रात्रि में मंदोदरी ने रावण को फिर समझाने का प्रयास किया। जो श्री राम के छोटे भाई द्वारा खींची गई एक रेखा तक नहीं लांग सका, वो स्वयं जगदीश्वर से किस प्रकार पार पा सकेगा।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। गायक कलाकार थे ए हरिहरन और उत्तरा केलकर। आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के संगीत संयोजक सतीश भाटिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था। आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ वैशाली के साथ 747 किलो हर्ट्ज पर।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 870-001-4242 पर।
1: 870-001-4242।
2: प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। आप सुनेंगे सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार सायं 6:30 से 7:20 तक कृषि कार्यक्रम। प्रायोजक नमामि गंगे एवं राज्य स्वच्छ जलापूर्ति उत्तर प्रदेश। आप सुनेंगे

केवल बुधवार सायं 6:30 से 7:20 तक कृषि कार्यक्रम प्रायोजक इफको लखनऊ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

0: यावत् जन प्रवासाय, युव व्यावसायिक विनिमयाय, परिवहन प्रौद्योगिकी विकासाय च भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्री अवोचत् यत् उभौ देशौ रक्षा सहयोगे नूतन क्षेत्राणाम् अन्वेषणं विधास्यतः। परमाणु ऊर्जा क्षेत्रे च परस्पर सम्बन्धम् अत्यन्तं सुदृढं करिष्यतः।
1: आज हमने मिलिट्री एक्सचेंज और डिफेंस प्रोडक्शन में सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान की। न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर भी सहमति बनी। वाराणसी का रोपवे, नोएडा का जेवर एयरपोर्ट और पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे तथा टनलिंग प्रोजेक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के उज्जवल उदाहरण है। इस सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए आज हमने ट्रांसपोर्ट, मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एग्रीमेंट किया है।
0: नवदेहल्यां श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य द्वितीये दीक्षांत समारोहे उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् अद्य मंगलमयं दीक्षांत भाषणं समाचरिष्यति। आकाशवाण्याः वार्ताहरैः सह संभाषणे विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठकः सहर्षं विज्ञापितवान् यत् अस्मिन् मंगलमये दीक्षांत महोत्सवे त्रयोदशाधिकैकसहस्रतोप्यधिकाः छात्र साधकाः सहभागिनः भविष्यन्ति। कुलपतिना संसूचितं यत् शैक्षणिक विद्या साधनायां सर्वाग्रणीभ्यः त्रिभ्यः मेधावी छात्रेभ्यः उपराष्ट्रपति करेभ्यः प्रतिष्ठितं शंकर दयाल शर्मा पदकं अर्पयिष्यते। अस्मिन् भव्य विद्या समारोहे चत्वारिंशदुत्तर द्विशत छात्राः विद्यावारिधि उपाधिभिः विभूषयिष्यन्ते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम्
2: अनुक्षणम् अद्यतन सूचनाभिः परिपूर्णाः तिष्ठन्तु। एक्स अथ पब पटलयोः @AIR न्यूज अलर्ट्स अनुगच्छन्तु।
0: तमिलनाडु पुदुचेरी पश्चिम बंगाल राज्येषु पञ्च विधानसभासनेषु अद्य शान्तिपूर्णं मतदानं प्रचलति। निर्वाचनायोगानुसारं मतगणना आगामी शुक्रवासरे सम्पादयिष्यते, यस्य फलं तावत् तस्मिन्नेव दिने द्रौपदी मुर्मुः अद्य प्रभृति हिमाचलप्रदेशस्य त्रिदिवसीय प्रवासे भविष्यति। यात्रावधौ राष्ट्रपतिः एम्स बिलासपुर संस्थायाः दीक्षांत समारोहे मुख्य अतिथित्वेन प्रशिक्षित चिकित्सकेभ्यः उपाधीन् प्रदास्यति। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य केरल माहे दक्षिण कर्नाटक तमिलनाडु पुदुचेरी करैकल क्षेत्रेषु अतिवृष्टि परा संचेतन जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा दिल्ली उत्तराखंड लक्षद्वीप प्रांतेषु विद्युत्पात पुरस्सरं मेघगर्जनं च संभाव्यते। यमन देशस्य मान्यता प्राप्तेन शासनेन हूती विद्रोहिणां विरुद्धं यमन अरुणोदयः ऑपरेशन डाउन ऑफ यमन इति बृहत् सैन्य अभियानं प्रारब्धम्। शासकीय बलैः रक्ताब्धि तटस्य मुख्य स्थानेषु अग्रगतिः प्राप्ता। अभियानस्यास्य मुख्यमुद्देश्यं हूती नियन्त्रितानां भूभागानां पुनर्

0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ वैशाली के साथ। आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH के माध्यम से भी। सुबह के 7 बजे का वक्त हुआ है और ये वक्त होता है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम का। आज की स्वास्थ्य चर्चा में नीना सोनकर आप सभी श्रोताओं के लिए लेकर आई हैं हर रोज की तरह महत्वपूर्ण जानकारी। तो आज क्या जानकारी है खास, सुन लेते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
1: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और आज की स्वास्थ्य चर्चा में हम बात करने जा रहे हैं उस रहस्यमय ऐतिहासिक और आयुर्वेदिक चमत्कार का नाम, जिसका नाम है संजीवनी। इस नाम में ही जीवन की ताजगी, गहरी आशा और चमत्कार का बोध छुपा है। जब जब हम भारतीय संस्कृति या पुराणों की ओर लौटते हैं, तो संजीवनी बूटी का उल्लेख सबसे अलग दिखाई देता है। रामायण के युद्ध में लक्ष्मण के जीवन को बचाने वाली संजीवनी आज भी हमारी संस्कृति, विज्ञान और उम्मीदों का प्रतीक बनी हुई है। लेकिन संजीवनी केवल एक बूटी, एक पौधा या एक औषधि नहीं है, बल्कि ये प्रकृति के अनमोल खजाने, जीवन की अद्भुत क्षमता और अंदरूनी जिजीवशा की कहानी है। अगर आप कभी पहाड़ों, जंगलों या हिमालय की घाटियों में जाएं, तो आपको कई बार ऐसे पौधे दिखेंगे जो सूखे में भी अपनी हरितिमा और ताजगी बरकरार रखते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि संजीवनी बूटी सूखे के महीनों में भी सूखता नहीं, बल्कि हल्की नमी पाते ही फिर से हरा भरा हो जाता है। गांव के लोग इस पौधे को जीवित पौधा भी कहते हैं, क्योंकि सूखे, विपरीत या मृत समान परिस्थितियों में भी वो अपने भीतर जीवन की लौ बनाए रखता है। कहते हैं अगर किसी मृत प्राय पौधे के पास संजीवनी को रख दे और थोड़ी सी नमी दे, तो वो पौधा फिर से पनप उठता है। ये प्रकृति का वो रहस्य है जिसे आधुनिक विज्ञान भी पूरी तरह सुलझा नहीं पाया है। संजीवनी का पारंपरिक महत्व केवल इसके चमत्कारी गुणों तक सीमित नहीं है। भारतीय आयुर्वेद में इसका उल्लेख विषहर, जीवनी शक्ति बढ़ाने वाली और गंभीर रोगों में उपयोगी औषधि के रूप में किया गया है। कहते हैं ये बूटी नाड़ी संस्थान, रक्त प्रवाह, पाचन, श्वसन और हृदय के लिए संजीवनी का काम करती है। पुराने समय में जब विषाक्तता, तेज बुखार या शरीर में अचानक आई कमजोरी होती थी, तब वैद्य संजीवनी वटी या काढ़ा तैयार करते थे, जिसे सेवन करने से जीवन में फिर से ऊर्जा और संतुलन आ जाता था। पंचकर्म और विष चिकित्सा में आज भी संजीवनी वटी जैसी औषधियाँ महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, जिनका उपयोग जीवन को संकट से उबारने में किया जाता है। अगर हम ग्रामीण और जनजातीय भारत की ओर देखें, तो वहाँ संजीवनी से जुड़ी सैकड़ों कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। पर्वतीय इलाकों के चरवाहे, शिकारी और वैद्य इस बूटी का उपयोग विषैले कीड़े या सांप के काटने, गंभीर थकावट या मवेशियों की गंभीर बीमारियों में भी करते रहे हैं। कहते हैं कि ये पौधा केवल शरीर नहीं, मन की भी संजीवनी है। अर्थात जब हताशा, डर या जीवन में अंधेरा महसूस हो, तब इसकी ऊर्जा से आशा, सकारात्मकता और मानसिक संतुलन लौटता है। आधुनिक विज्ञान भी अब संजीवनी बूटी की जांच में जुड़ा है। इसमें पाए जाने वाले बायोएक्टिव कंपाउंड्स जैसे कि फ्लेवोनॉइड्स, टर्पेनॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर के ऊतकों की मरम्मत, कोशिकाओं के पुनर्जीवन और प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि के लिए उपयोगी हैं। रिसर्च में पाया गया है कि संजीवनी का अर्क शरीर में सूजन कम करने, तनाव से लड़ने और अंगों के कार्य को पुनर्जीवित करने में भी लाभकारी है। विशेष तौर पर इसका उपयोग थकान, स्ट्रेस, इम्यूनिटी कमजोर होने पर या लंबी बीमारी के बाद कमजोरी दूर करने के लिए किया जाता है। माना जाता है कि ये बूटी मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को मजबूत बनाती है।

0: जिससे एकाग्रता, मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन बढ़ता है। लेकिन संजीवनी की सबसे बड़ी ताकत यही नहीं कि वो केवल औषधि है, ये जीवन का प्रतीक है, उस जीवन का जो बार बार गिरकर फिर से उठने की ताकत रखता है। ये पौधा हमें सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी अगर जीवन के प्रति आस्था और धैर्य हो तो हम फिर से खिल सकते हैं, फिर से मुस्कुरा सकते हैं। ये जड़ी बूटी हमें प्रकृति से जुड़ने, उसकी शक्ति को समझने और अपने जीवन में उम्मीद बनाए रखने का संदेश देती है। जैसे संजीवनी बूटी की छोटी सी नमी मृत प्राय पौधे को जीवित कर देती है, वैसे ही कभी कभी हमारे जीवन में एक छोटी सी आशा, एक विश्वास या एक सकारात्मक सोच हमें फिर से ऊर्जा से भर देती है। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक और आत्मिक स्तर पर भी संजीवनी का महत्व उतना ही है। आज जब जीवन में भाग दौड़, तनाव और परेशानियों का बोलबाला है, ऐसे में हमें अपने भीतर की संजीवनी को जागृत करने की जरूरत है। योग, प्राणायाम, ध्यान और संतुलित दिनचर्या हमारे जीवन की संजीवनी है। मैं नीना सोनकर आपसे यही विदा लेती हूँ, अगली बार फिर मिलेंगे। नमस्कार।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सभी श्रोता सुन रहे थे संस्कृति विज्ञान और स्वास्थ्य का प्रतीक संजीवनी विषय पर जानकारी दे रही थी नीना सोनकर। और अब आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। आज रात 10 बजे राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत आप सुनेंगे आकाशवाणी अल्मोड़ा की प्रस्तुति कार्यक्रम खेल दर्पण। सुर्खियों में कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा पूर्वाह्न 11 बजे। सुबह 9:15 पर सुनिएगा जिले की हलचल। आज के जिले हैं देवरिया और फिरोजाबाद। उर्दू कार्यक्रम के तहत सुबह 9:30 पर समात फरमाइएगा आलमी यौम मस्कन, रिहाइश का आलमी दिन पर मबनी खसूसी प्रोग्राम। तहरीर और आवाज फरीदुल्लाह खान की होगी, पेशकश आकाशवाणी के रामपुर मरकज की होगी। रात 8 बजे हिंदी कार्यक्रम में सुना ना भूलें डॉक्टर रविंद्र प्रताप सिंह की कहानी स्मृतियां। श्रोता अपना पसंदीदा कार्यक्रम आज सुबह सुनेंगे आज सुबह 7:31 पर। सानिया सिंह के गाए भोजपुरी लोकगीतों का आनंद लीजिएगा लोकरंग कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर और लोक माधुरी में दिन में 2:45 पर। बहने सुनेंगी कार्यक्रम उदिता दिन में 1:15 पर। आज इस कार्यक्रम में डॉक्टर सोनिया भट्ट व्यास की वार्ता सुनवाई जाएगी A2G तनाव मुक्त रहने के उपाय फ्री। इसके अलावा बहने कुछ घरेलू टिप्स के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगी। मटर उत्पादन की उन्नत तकनीक डॉक्टर राम कुमार सिंह से की गई ये भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी विज्ञान और किसान कार्यक्रम में दिन में 2:30 पर। भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। शाम 5:10 पर हमारे युवा साथी सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। आज इस कार्यक्रम में युवा और घर के बुजुर्ग रिश्ता विषय पर आप जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रस्तुतकर्ता होंगे रमनप्रीत सिंह। नई उड़ान कार्यक्रम में शाम 5:45 पर नवदृष्टि क्रम में ओबी आधारित जानकारी का विषय होगा अंतरिक्ष भारत 2047 अंतरिक्ष विज्ञान तकनीकी सामर्थ्य। शाम 6:30 पर लोकायतन कार्यक्रम में डॉक्टर सुयश मिश्र की वार्ता प्रसारित की जाएगी जिसका विषय होगा स्टार्टअप इंडिया से ग्रामीण बदलाव। शाम 6:50 पर किसान वाणी कार्यक्रम में डॉक्टर हरिकृष्ण मिश्र की वार्ता डॉक्टर हरिकृष्ण मिश्र से की गई भेंट वार्ता का विषय होगा रबी में तिलहन उत्पादन। भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आप सुनेंगे शाम 7:45 पर। मीना वर्मा की गाई गजलों का लुत्फ उठाइएगा सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात 8:10 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर सुनना ना भूलें अनुपम तिवारी का राग रागेश्री में बांसुरी वादन। फिल्म संगीत का फोन इन प्रोग्राम हेलो मेरी पसंद आप सुनेंगे रात 9:30 पर। ईमेल पर आधारित आपके पसंदीदा फिल्मी गीत हम आपको सुनवाएंगे सुबह 8:45 पर आपके मेल आपके गीत कार्यक्रम में। और फिल्म संगीत का फोन इन इंटरैक्टिव प्रोग्राम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें आप सुनेंगे दिन में 11:35 पर। और दोपहर 12:30 पर सुनवाए जाएंगे सतपहार नगमे। ये थे आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम जिन्हें आप सुन सकेंगे।

आप सभी को प्यार भरा नमस्कार हमारा। आज की विविधा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं वैशाली आज की विविधा लेकर हाजिर हूँ। श्रोताओं, रात में आसमान में चमकते तारों को देखकर कभी आपने सोचा आखिर वहाँ है क्या? वे कितने गर्म हैं, किन तत्वों से बने हैं और इतनी दूर बैठे हम उनके बारे में जान कैसे लेते हैं? ना वहां जाकर नमूना ला सकते हैं, ना किसी तारे में थर्मामीटर लगा सकते हैं, फिर भी उसकी रोशनी बहुत कुछ बता देती है। इस रोशनी के पीछे छिपे रहस्यों को समझने का एक बेहद महत्वपूर्ण रास्ता खोजा था सुप्रसिद्ध भारतीय गोल। तो आज की विविधा में बात भारत के सुपुत्र मेघनाथ साहा की, जिनकी कहानी में तारों की चमक है, लेकिन उस चमक तक पहुंचने का रास्ता गरीबी, संघर्ष और भेदभाव से होकर गुजरता है। अविभाजित भारत का बंगाल ढाका के पास शावरा टोली गांव, जो आज बांग्लादेश में है, यहीं एक साधारण परिवार में 6 अक्टूबर 1893 को मेघनाथ साहा का जन्म हुआ। पिता की सीमित आमदनी में बच्चों की पढ़ाई जारी रखना आसान नहीं था। मेघनाथ साहा को भी दुकान पर काम करना पड़ता, लेकिन माँ और परिवार के सहयोग ने पढ़ाई का दरवाजा बंद नहीं होने दिया। पढ़ाई उन्हें गांव से ढाका और फिर कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज तक ले आई। यहाँ उन्हें जगदीश चंद्र बोस और प्रफुल्ल चंद्र रे जैसे महान शिक्षकों से सीखने का सुअवसर मिला। उनके सहपाठी थे सत्येंद्र नाथ बोस, आगे चलकर भौतिकी की दुनिया का एक और बड़ा नाम। एक तरफ ज्ञान की दुनिया खुल रही थी तो दूसरी तरफ समाज की संकीर्ण सोच रास्ता रोक रही थी। इन बाधाओं के बीच मेघनाथ साहा ने पढ़ाई जारी रखी। गणित की मजबूत समझ लेकर वे भौतिकी के उन प्रश्नों की ओर बढ़े जिनका जवाब उस समय दुनिया खोज रही थी, और ऐसा ही एक प्रश्न था, तारों की रोशनी अलग अलग क्यों दिखाई देती है? किसी तारे की रोशनी को अलग अलग रंगों में बांटने पर कुछ खास रेखाएं दिखाई देती हैं। इन्हें कहते हैं वर्ण क्रम की रेखाएं, यानी तत्वों की पहचान के निशान। लेकिन एक ही तत्व की रेखाएं किसी तारे में स्पष्ट तो किसी दूसरे में कमजोर होती थीं। क्या वहां तत्व कम था या वजह कुछ और थी? 1920 में मेघनाथ साहा ने इस पहेली को समझने की दिशा में निर्णायक कदम उठाया। उन्होंने बताया कि बेहद गर्म वातावरण में परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन अलग हो सकते हैं। इसे कहते हैं आयनीकरण। तापमान के साथ परमाणुओं की अवस्था बदलती है तो रोशनी में उनके निशान भी बदल सकते हैं। उन्होंने इस संबंध को गणित के एक समीकरण में बांधा, साहा आयनीकरण समीकरण। इससे तापमान और इलेक्ट्रॉनों के घनत्व के आधार पर समझना संभव हुआ कि किसी गर्म गैस में कितने परमाणु आयनित होंगे, यानी किसी तारे में किसी तत्व की रेखा कमजोर दिखे तो जरूरी नहीं कि वो तत्व वहां कम हो। तापमान और आयनीकरण भी इसकी वजह हो सकते हैं। ये विचार बेहद महत्वपूर्ण था। मेघनाथ साहा के काम ने सूर्य और दूसरे तारों के वर्ण क्रम की व्याख्या को नई दिशा दी। आगे अनेक वैज्ञानिकों ने इसी आधार पर शोध को आगे बढ़ाया। 1927 में उन्हें ब्रिटेन की प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया। छोटे गांव से निकला विद्यार्थी विश्व विज्ञान में अपनी जगह बना चुका था। मेघनाथ साहा चाहते थे कि भारत में और वैज्ञानिक तैयार हों और उन्हें शोध के अवसर मिलें। इसीलिए उन्होंने संस्थान बनाने और वैज्ञानिकों को एक मंच पर लाने में भी ऊर्जा लगाई। 1930 में इलाहाबाद में स्थापित विज्ञान अकादमी के निर्माण में

उनकी प्रमुख भूमिका रही। यही संस्था आगे नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस इंडिया के नाम से जानी गई। कोलकाता के परमाणु भौतिकी संस्थान की स्थापना भी उनकी महत्वपूर्ण विरासत है, जिसे आज साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के नाम से जाना जाता है। मेघनाथ साहा का मानना था कि विज्ञान देश की समस्याओं का समाधान खोजने में उपयोगी होना चाहिए। 1952 में मेघनाथ साहा संसद पहुंचे। उन्होंने परमाणु ऊर्जा और कैलेंडर सुरक्षा जैसे विषयों पर काम किया। प्रयोगशाला से देश की नीतियों तक उनका उद्देश्य वैज्ञानिक सोच को लोगों के जीवन से जोड़ना था। तारों को समझने वाला ये वैज्ञानिक धरती पर लोगों की आवश्यकताओं के प्रति भी सजग था। 16 फरवरी 1956 को मेघनाथ साहा का निधन हो गया, लेकिन उनका काम विज्ञान की आगे बढ़ती यात्रा का हिस्सा बना रहा। तारों के वातावरण और गर्म आयनित गैसों को समझने में साहा समीकरण आज भी एक मूलभूत आधार है। उनका जीवन बताता है, प्रतिभा को अवसर चाहिए, आगे बढ़ने के लिए मेहनत और ज्ञान को सार्थक बनाने के लिए समाज के प्रति जिम्मेदारी। तो अगली बार आसमान में कोई चमकता तारा दिखे तो मेघनाथ साहा को याद कीजिएगा। डॉक्टर मेघनाथ साहा एक ऐसा नाम जिनकी विरासत तारों की रोशनी में भी है और भारत की वैज्ञानिक चेतना में भी।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।
0: महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास

0: कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का किया हवाई सर्वेक्षण, कहा आपदा की घड़ी में पीड़ितों के साथ खड़ी है सरकार। अयोध्या में गुरु पर्व महामहोत्सव में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा केंद्र सरकार ने संस्कृत को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने पर दिया विशेष ध्यान। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए घोषित किए 8 प्रत्याशियों के नाम, 16 अक्टूबर को होगा मतदान। और भारत और वेस्ट इंडीज के बीच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आज खेला जाएगा T20 मैच। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र फैजुल्लागंज से नैमिषारण्य तक हवाई सर्वेक्षण किया। साथ ही उन्होंने बख्शी का तालाब तहसील क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात कर राहत सामग्री वितरित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में पीड़ितों के साथ सरकार खड़ी है।
3: सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव को भी इस बारे में कहा है कि फैजुल्लागंज से लेकर के तट का जो गांव तटबंध के बाहर रहे वहां पर बरसात का पानी बाहर निकालने के लिए भी उचित व्यवस्था देनी पड़ेगी। पंपिंग सेट लगा करके वहां के पानी को बरसात के समय जब नदी का जलस्तर बढ़े तो उसको पंप आउट करने के लिए भी एक व्यवस्था सिंचाई विभाग अभी से उसका प्रस्ताव तैयार करके उसको स्वीकृत करे।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल अयोध्या के रानोपाली स्थित उदासीन आश्रम में गुरु पर्व महामहोत्सव और संत सम्मेलन में शामिल हुए। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने संस्कृत के अध्ययन को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया है। रक्षा मंत्री ने प्रदेश के सभी विद्यालयों में वैदिक गणित की पढ़ाई शुरू कराने पर जोर दिया।
4: वैदिक मैथमेटिक्स आज भी बेजोड़ है बहनों भाइयों, बड़े से बड़े कठिन सवालों का समाधान वैदिक माध्यम से निकाला जा सकता है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है।
2: आगरा में आज शाम उत्तर भारत की प्रमुख ऐतिहासिक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की 12 शोभा यात्रा निकाली जाएगी। हमारे आगरा प्रतिनिधि ने बताया कि मथुरा और फिरोजाबाद सहित कई अन्य जिलों के लोग प्रभु श्री राम की बारात में बाराती के तौर पर शामिल होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कल मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग वाली याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। एक रिपोर्ट।
5: यह याचिका निर्वाचन आयोग में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान एक तरफा फैसले लेने के आरोपों के संबंध में दायर की गई थी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार, निर्वाचन आयोग और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण अपने लोकतांत्रिक विरासत को और सुदृढ़ करने का महत्वपूर्ण प्रयास है। इस बीच निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया जिनमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के फॉर्म 6 में गैर कानूनी रूप से और एक तरफा बदलाव किए। आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR के फॉर्म 6 से जुड़ी घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। समाचार कक्ष से अरुण।
2: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव के लिए 8 प्रत्याशियों

0: घोषित प्रत्याशियों में धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर खान और श्रुति गंगवार शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन सभी प्रत्याशियों को आयोग ने राज्यसभा की 11 सीटों के लिए बीते माह 29 सितंबर को द्विवार्षिक चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी की थी। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 सीटें भी शामिल हैं। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, बीएल वर्मा, समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव, बसपा के रामजी और अन्य नेताओं का कार्यकाल सीटों के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होना है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर गुजरात के वडनगर से वाराणसी तक निकाली जा रही सेवा संकल्प यात्रा कल दोपहर सुल्तानपुर पहुंची। वहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को आगे के लिए रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि से कर्मभूमि तक की यह यात्रा भारत को एक सूत्र में जोड़ने के संकल्प का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। विशेष श्रृंखला में आज जानेंगे कि उत्तर प्रदेश का नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश के विकास को किस प्रकार आकार दे रहा है।
2: नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजनाओं में से एक है, जिसके पहले चरण को पीपीपी मॉडल के तहत लगभग 11,200 करोड़ रुपए के कुल निवेश से विकसित किया गया है। 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत अभियान का एक नया अध्याय है।
3: देश का सबसे बड़ा प्रदेश आज देश के सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाले राज्यों से एक हो गया है। ये एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों, छोटे और लघु उद्योगों, यहाँ के नौजवानों के लिए अनेक नए अवसर लेकर आने वाला।
2: नोएडा के निवासी मोहित कुमार ने कहा कि ये एयरपोर्ट पूरे क्षेत्र को नई पहचान देगा।
4: इससे रोजगार, व्यापार, उद्योग, पर्यटन और युवाओं के लिए नए अवसर बढ़ेंगे। आसपास के गांव और कस्बों में सड़क परिवहन, अन्य सुविधाओं के विकास को गति मिलेगी। यह एयरपोर्ट केवल एक हवाई अड्डा नहीं बल्कि हमारे क्षेत्र के उज्ज्वल भविष्य की नींव है।
2: पहले चरण में हवाई अड्डे की यात्री संचालन क्षमता 12 मिलियन यात्री प्रतिवर्ष है, जिसे भविष्य में 70 मिलियन तक ले जाने की योजना है। ये हवाई अड्डा देश में एविएशन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में आज भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला T20 मैच खेला जाएगा। पुलिस के अनुसार इस दौरान ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए शहीद पथ पर आज दोपहर 3 बजे से मैच समाप्त होने तक सभी प्रकार की बसों और छोटे बड़े कमर्शियल वाहनों की नो एंट्री रहेगी। मुजफ्फरनगर में कल देर रात हुए 2 अलग अलग सड़क हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई। वहां के पुरकाजी थाना क्षेत्र में लक्सर रोड पर स्कॉर्पियो और डंपर की टक्कर में स्कॉर्पियो सवार 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के अनुसार स्कॉर्पियो में 7 लोग सवार थे। वाहन सवार सभी लोग हरिद्वार से लौट रहे थे। वहीं तीतावी थाना क्षेत्र में पानीपत खटीमा राजमार्ग पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का किया हवाई सर्वेक्षण, कहा आपदा की घड़ी में पीड़ितों के साथ खड़ी है सरकार। अयोध्या में गुरु पर्व महामहोत्सव में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा केंद्र सरकार ने संस्कृत को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने पर दिया विशेष ध्यान। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए घोषित किए 8 प्रत्याशियों के नाम, 16 अक्टूबर को होगा मतदान।

0: भारत और वेस्टइंडीज के बीच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आज खेला जाएगा T20 मैच। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

0: 747 किलोहर्ट्ज पर अपने रेडियो सेट पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र और प्रोग्राम चल रहा है नमस्ते लखनऊ। और श्रोताओं, आज नई ऊर्जा नए उत्साह के साथ लेकर हम हाजिर हैं कार्यक्रम आज सुबह, जो आपका बेहद पसंदीदा कार्यक्रम भी है। और आज इस कार्यक्रम में मैं हूं वैशाली और मेरे साथ हैं
1: श्रद्धा। कीजिए स्वीकार हमारा प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी को गुड मॉर्निंग। अच्छा श्रद्धा, अभी हमने अपने श्रोताओं को नमस्कार किया और नमस्ते हम करते ही हैं और लोगों का स्वागत करते हुए कहते हैं नमस्ते, प्रणाम, नमस्कार, तो सच में मन में एक शांत सी लहर उठती है।
1: बिल्कुल, ये शब्द केवल अभिवादन नहीं है बल्कि हमारी भारतीय संस्कृति की आत्मा है।
0: हाँ, और नमस्कार करते हुए सिर झुकाना और आंखें बंद करना, यही तो दैवी प्रेम का भाव है। जब दो लोग एक दूसरे को नमस्ते कहते हैं, नमस्कार करते हैं, तो जानती हो दो आत्माएं एक बिंदु पर मिलती हैं जहां सिर्फ होती है शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा। नमस्ते का भाव है मैं आपके भीतर स्थित दिव्यता को नमन करती हूँ। हाथ जोड़ना, सिर झुकाना, इसमें विनम्रता, सम्मान और आत्मीयता का बहुत ही सुंदर स्वभाव छुपा होता है।
1: बिल्कुल वैशाली, यानी नमस्कार और प्रणाम सिर्फ शिष्टाचार नहीं बल्कि हमें अहंकार से दूर करके विनम्रता, सम्मान और आत्मीयता का भाव सिखाते हैं। तभी तो गुरु हो या शिष्य, छोटे या बड़े, नमस्ते सभी को जोड़ता है।
0: और जब हम नमस्ते करते हैं तो हमारे बड़े, हमारे गुरु आशीर्वाद भी तो देते हैं। सुखी रहो, सुखी रहो, ज्ञानवान बनो, आयुष्मान भव, सफलता आपके कदम चूमे और भी ढेरों आशीर्वाद। और सबसे खूबसूरत बात जानती हो क्या है, इसके लिए ना किसी भेद की जरूरत होती है ना दूरी की, बस एक मुस्कान और जुड़े हुए हाथ।
1: वही क्या बात कही, तो क्यों ना हम सब सुंदर परंपरा को अपनाएं और हर मुलाकात की शुरुआत नमस्कार और नमस्ते से करें।

0: अच्छा श्रद्धा, किसी के अगर कदम लड़खड़ाएं या बोलने में वक्त लगे तो क्या हम उसकी पूरी बात सुनते हैं?
1: सुननी चाहिए, हर किसी को अपनी बात कहने का बराबर मौका मिलना चाहिए।
0: यही याद दिलाता है 6 अक्टूबर विश्व सेलेब्रल पॉल्सी दिवस।
1: अच्छा वैशाली, ये क्या है?
0: श्रद्धा, विकसित होते मस्तिष्क को पहुंची क्षति से जुड़ी एक स्थिति जो शरीर की गति, संतुलन और मांसपेशियों के नियंत्रण को प्रभावित करती है, और जानती हो इसका असर हर व्यक्ति पर अलग होता है।
1: यानी उनकी जरूरतों को समझना भी जरूरी है।
0: हाँ बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि स्कूल, दफ्तर और सार्वजनिक जगहें सबके लिए सुलभ बने, कभी कभी दुर्बल कर देने वाली बीमारी के लिए अनुसंधान और संसाधनों का समर्थन करने के लिए अपना समय या धन का दान जरूर करें।
1: बिल्कुल, तो आइए सम्मान दें, उनकी बात सुने और उन्हें बराबरी के अवसर बनाएं ताकि हर कोई खुलकर जी सके।
0: अच्छा श्रद्धा, आज 6 अक्टूबर है और आज ही के दिन 1893 में ढाका के एक साधारण परिवार में जन्मे थे डॉक्टर मेघनाथ साहा, जिन्होंने अपनी प्रतिभा से भारतीय विज्ञान को एक नई पहचान दिलाई
1: जी।
0: और सबसे महत्वपूर्ण बात कि उन्होंने साहा आयनीकरण समीकरण दिया, जिसने तारों के तापक्रम और उनके वर्ण क्रम को समझने में खगोल विज्ञान में क्रांतिकारी योगदान दिया।
1: जी हाँ, वे केवल वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि विज्ञान, शिक्षा और देश के विकास के प्रबल समर्थक भी थे। महान वैज्ञानिक मेघनाथ साहा की जयंती पर उन्हें शत शत नमन।

0: और श्रद्धा हमारे श्रोता सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम आज सुबह, जो हमारा तो पसंदीदा कार्यक्रम है ही श्रद्धा, और हमारे श्रोताओं का भी पसंदीदा कार्यक्रम है।
1: जी हाँ, तभी तो सुबह सुबह वो हमसे जुड़ जाते हैं, क्योंकि हम लाते हैं उनके लिए ढेर सारा मनोरंजन, ज्ञान और खूबसूरत से गीत, है ना।

0: सोचो श्रद्धा, पैसे मांगने के लिए भी कैलेंडर में एक दिन तय हो तो कैसा लगेगा?
1: भाई वाह, फिर तो बताओ दीदी जल्दी से क्या तारीख है वो।
0: आज 6 अक्टूबर है, ये तो
1: जी
0: तुम भी
1: हाँ
0: जानती हो, और आज मनाया जाता है नेशनल ट्रांसफर मनी टू योर डॉटर डे, यानी अपनी बेटी को पैसे भेजने का
1: भाई
0: दिन।
1: वाह, क्या बात है। और वैशाली, बहुत ही अच्छी बात बताई आपने कि मतलब उस दिन मम्मी पापा को मैसेज, पापा आज तो पैसे भेजना बनता है।
0: और अगर भाई हमारी भी बेटियां हैं तो हम भी जरूर उनको कुछ स्पेशल तोहफा दे सकते हैं, पैसे भेज सकते हैं, और भेजना भी चाहिए। और सबसे मजेदार ये कि अनौपचारिक अवसर है बेटी की पढ़ाई, जरूरत या किसी छोटे से सपने के लिए आर्थिक मदद और ढेर सारा प्यार देना।
1: बिल्कुल, लेकिन वैशाली फिर तो बेटे कहेंगे हमारा नंबर कब आएगा।
0: हाँ, तो बिल्कुल, ये तो भाई उनका हक भी है, बेटियों का जब हक बनता है तो बेटों का भी
1: जी हाँ,
0: क्यों होना चाहिए। 13 अक्टूबर को उनके लिए भी ऐसा ही दिन मनाया
1: तो
0: जाता
1: भाई
0: है।
1: नोट कर लीजिए आपको कब पैसे मांगने हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो रकम छोटी हो या बड़ी, साथ में प्यार भरा संदेश जरूर भेजिए।
0: आज अपनी क्षमता के मुताबिक बेटी को एक छोटा सा सरप्राइज दीजिए, साथ में लिखिए, बेटी तुम्हारे सपनों में हम तुम्हारे साथ हैं।
1: बिल्कुल,
0: अच्छा श्रद्धा, क्या तुमने ये नोटिस किया है कि कल से मौसम थोड़ा अच्छा हो गया है? मुझे लगता है अब पंखे की हवा और नेचुरल जो ताजी हवा है उसमें अच्छा महसूस हो रहा
1: जी
0: है ना?
1: हाँ
0: तो बहुत ही जल्द त्योहार भी आने वाले हैं, दशहरा है, नवरात्रि है, दीपावली है, और ठंड भी बस समझ लो
1: दस्तक
0: दस्तक।
1: दे रही है ना। हाँ, और सुभा
0: हाँ,
1: सुबह का मौसम तो और भी खूबसूरत
0: बहुत
1: होता
0: अच्छा
1: है।
0: होता है। और मौसम आज का कैसा रहने वाला है, इस बारे में हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सीनियर साइंटिस्ट IIMD लखनऊ मोहम्मद दानिश जी। आइए जान लेते हैं आपसे मौसम का हाल।

0: कि इन दिनों मौसम कैसा रहेगा?
1: मौसम की बात करें तो जैसा कि एक ट्रफ लाइन बना हुआ है
0: जी,
1: वेस्ट यूपी या बंगाल तक, और साथ ही में एक बिहार के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसके वजह से आने वाले आज कल परसों तीन दिन लखनऊ समेत जो तराई बेल्ट है उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर तराई बेल्ट तक हल्की वर्षा का आगमन रहेगा गरज चमक के साथ, और तेज हवाओं का भी चलन रह सकता है। कुल मिला के आज कल परसों तीन दिन थोड़ा मौसम में बदलाव रहेगा, उसके बाद फिर मौसम साफ हो जाएगा
0: जी। यानी हमारे श्रोताओं को भी थोड़ा और मौसम में अपना ध्यान रखना है, बरसात हो सकती है, छाता साथ लेकर चले
1: जी।
0: जी सर, आपने हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकाला, इतनी अच्छी हमें जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।

0: वाकई वैशाली, इतना खूबसूरत गीत आपने सुनवाया हमारे श्रोताओं को। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और कुछ और जानकारियां अपने श्रोताओं तक पहुंचाते हैं।
1: हाँ हाँ, मुझे लग रहा है तुम कुछ खास जानकारी देना चाह रही हो श्रोताओं को, बताओ भाई।
0: हाँ तो बता दें कि सन 1995 में 51 पेगासीवी की खोज ने खगोल विज्ञान में इतिहास रच दिया। ये सूर्य जैसे तारे की परिक्रमा करने वाला खोजा गया पहला बाह्य ग्रह था। फ्रांस के हाउते प्रोविंस वेधशाला में मिशेल मेयर और डीडियर कैलोज ने इसकी खोज की। ये बृहस्पति के लगभग आधे द्रव्यमान का है और अपने तारे का एक चक्कर महज 4 दिनों में पूरा करता है।
1: तो बाह्य ग्रहों की खोज के नए युग की शुरुआत यहीं से हुई थी, है ना? और श्रद्धा, अपने श्रोताओं को हम बता दें कि 2010 को इंस्टाग्राम लॉन्च हुआ था, 6 अक्टूबर। सिर्फ एक तारीख ही नहीं बल्कि डिजिटल सोशल मीडिया के इतिहास का भी एक महत्वपूर्ण दिन है। 2010 में आज ही के दिन इंस्टाग्राम को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया था।
0: बिल्कुल, इंस्टाग्राम ने सोशल मीडिया की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई और फोटो वीडियो साझा करने के तरीके को काफी बदल दिया।
1: केविन सिस्ट्रोम और माइक क्राइगर द्वारा शुरू किए गए इस फोटो शेयरिंग ऐप ने लॉन्च के पहले ही दिन जानती हो करीब 25,000 उपयोगकर्ता जोड़ लिए थे, है ना?
0: आश्चर्य की बात, अच्छी जानकारी है और कितनी मतलब रोचक भी।
1: बिल्कुल। अच्छा श्रद्धा, कभी सुना है एक टोपी की कीमत से त्योहार की तारीख तय हो गई?
0: क्या बात है, टोपी थी या कैलेंडर?
1: एलिस इन वंडरलैंड के इसी रंगदार किरदार मैड हैटर की टोपी जिस पर लिखा था 10/6,
0: यानी 6 अक्टूबर अमेरिकी तारीख के हिसाब से।
1: बिल्कुल, लेकिन असल में जानती हो वो कीमत थी 10 शिलिंग और 6 पेंस।
0: भाई वाह वाह, दाम से बन गया दिन।
1: 1986 में अमेरिका के बोल्डर शहर के कंप्यूटर टेक्नीशियनों ने इसी से प्रेरित होकर मैड हैटर डे मनाना शुरू किया। आखिर सभी के भीतर बच्चे की भी थोड़ी सी एक जो भावना होती है उसके लिए छुट्टी तो चाहिए ही, है ना?
0: बिल्कुल। तो आज आप भी थोड़े अतरंगी बनिए, मजेदार टोपी पहनिए, दोस्तों के संग हंसिए और मुस्कुराइए।
2: का जानू मैं सजनिया, चमकेगी कब चंदनी।

0: अपने जमाने का बहुत ही खूबसूरत सा गीत अभी हमने अपने श्रोताओं को सुनवाया। तुम श्रद्धा स्वाद और सेहत में अगर हम बात करें तो गार्लिक यानी कि लहसुन अपना एक विशेष स्थान रखती है ना?
1: जी हाँ।
0: और रसोई में वो कौन सी चीज है जो पूरे खाने में जान देती है? तो भाई हम कहेंगे कि
1: लहसुन।
0: हाँ,
1: जिसका तड़का लगे तो भूख अपने आप हाजिर हो जाए।
0: और लहसुन के दीवानों के लिए ही 6 अक्टूबर को मनाया जाता है गार्लिक लवर्स डे।
1: भाई बिल्कुल, देखिए ना, आज आपके खाने पीने का भी और मनोरंजन का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है।
0: हाँ हाँ, मतलब मेन्यू में गार्लिक ब्रेड, गार्लिक पास्ता और अपनी देसी लहसुन की चटनी,
1: भाई क्या कहने।
0: और दाल का तड़का हो या चटनी की धार, लहसुन हर जगह स्वाद का सितारा है।
1: जी हाँ, ये बात तो है, और सेहत का भी।
0: तो स्वाद के इस छोटे उस्ताद के नाम गार्लिक लवर्स डे पर आप सभी और हम और तुम भी अपनी पसंदीदा आज डिश बना सकते हैं।
1: बिल्कुल। और आपकी रसोई में लहसुन का सबसे स्वादिष्ट कमाल क्या है ये भी बताइएगा।
0: बिल्कुल श्रोताओं, और आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है ये भी हमें पत्र और ईमेल के माध्यम से आप बता सकते हैं, है ना? और श्रद्धा, जहाँ हम सेहत की बात करते हैं तो सेहत के लिए भोजन के साथ साथ बहुत महत्व रखता है खेल कूद व्यायाम।
1: हाँ।
0: भी है ना? और जानती हो, मैदान में तालियां खिलाड़ियों के लिए बजती हैं, और लेकिन उन्हें जीत के लिए तैयार जानती हो कौन करता है?
1: कोच, जिनकी एक आवाज एक बार और कोशिश करो थके कदमों में भी जान डाल देती है।
0: सही कहा श्रद्धा।

0: उन्हीं के सम्मान में 6 अक्टूबर को मनाया जाता है नेशनल कोचेस डे। 1972 में अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने इसकी घोषणा की थी।
1: कोच खेल के साथ साथ अनुशासन, टीम भावना और हार के बाद फिर उठना भी सिखाते हैं।
0: तो अपने कोच को संदेश जरूर भेजिए, शुक्रिया कोच, थैंक यू कोच, आपने खुद पर और हमें खुद पर भरोसा करना सिखाया है।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रद्धा, एक गीत हो जाए, है ना?
1: जी हाँ,

0: श्रोताओं, आप भी अपने जीवन के रंगों का आनंद लीजिए, हंसिए, खिलखिलाइए, मुस्कुराइए और हर नए दिन का स्वागत कीजिए
1: और अपने जीवन को खूबसूरत रंगों से सजाते हुए आगे बढ़िए।
0: तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपने श्रोताओं से हम इजाजत लेते हैं। तो दीजिए अनुमति वैशाली और
1: श्रद्धा को
0: नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज सुबह। नमस्ते लखनऊ कार्यक्रम अब इसी के साथ संपन्न होता है। दीजिए इजाजत हमें, नमस्कार। बने रहिए मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्स के साथ और सुनते रहिए आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित हमारे अन्य कार्यक्रमों को। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीट और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से 8 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति समर्थन दोहराया। अफगानिस्तान के नागरिकों की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मधुरांतकम और दारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुचेरी की तट्टान सावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजी नगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की नागांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका सिंह रावत, रामप्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को उम्मीदवार बनाया है। इन नामों को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने मंजूरी दी है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इन चुनावों में उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के साथ पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर उपचुनाव भी शामिल है। इन सीटों पर मतदान 16 अक्टूबर को होगा। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच कल 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। कल नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: हम स्विट्जरलैंड की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को भारत में बड़े लेवल पर निवेश करने और कैपेसिटी बिल्डिंग, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में भागीदारी के लिए आमंत्रित करते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी सहयोग भी हमारी साझेदारी का एक मजबूत स्तंभ है। मुझे बहुत खुशी है कि हम जल्द ही हेल्थ, क्लीन एनर्जी और स्पेस जैसे प्रायोरिटी एरियाज में नए ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं।
0: श्री पहमला ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। बाद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पहमला का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर में दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि रहेंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दीक्षांत समारोह के बाद राष्ट्रपति का मनाली जाने का कार्यक्रम भी है।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिमाचल प्रदेश के 3 दिवसीय प्रवास के पहले दिन आज बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां भी प्रदान करेंगी। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति आज सुबह करीब 10:30 बजे एम्स पहुंचेंगी। दीक्षांत समारोह में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के दौरे के दूसरे दिन 7 अक्टूबर को राष्ट्रपति मुर्मू मनाली के प्रसिद्ध हिडिम्बा मंदिर और अटल टनल रोहतांग भी जाएंगी। इस बीच राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए बिलासपुर और कुल्लू जिलों में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। एम्स परिसर के अलावा राष्ट्रपति के आने जाने वाले मार्गों पर भी अतिरिक्त पुलिस व सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है।

0: राष्ट्रपति का 8 अक्टूबर को सुबह दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन आज नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने बताया कि दीक्षांत समारोह में 1300 से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एरो इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को उजागर किया जाएगा। देश की एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। कार्यक्रम में शक्ति इंजन के लिए दूसरी उत्पादन क्षमता की स्थापना भी प्रमुख रूप से प्रदर्शित की जाएगी। इसके लिए 200 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप FSSS-1 का जलावतारण करेंगे और फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-5 के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। वे उन्नत स्लिपवे 4 और 300 टन क्षमता वाली गोलियत क्रेन का भी उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि लंबाई बढ़ाए जाने और भार वहन क्षमता में वृद्धि के बाद उन्नत स्लिपवे 4 और गोलियत क्रेन की मदद से शिपयार्ड 45,000 मीट्रिक टन की क्षमता वाले जहाजों का निर्माण और जलावतारण कर सकेगा। इससे बड़े और जटिल जहाजों के निर्माण की शिपयार्ड की क्षमता बढ़ेगी। गोवा में पोरवोरेम में विधानसभा परिसर की रजत जयंती के अवसर पर आज से 9 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के दौरान विधायकों को सम्मानित किया जाएगा, साथ ही प्रदर्शनी के माध्यम से विधानसभा परिसर के इतिहास को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा।
2: रजत जयंती समारोह का उद्घाटन आज शाम 4 बजे विधानसभा परिसर में होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और गोवा के राज्यपाल पुसापति अशोक गजपति राजू उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत और विपक्ष के नेता यूरी आलेमाओ भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर विधानसभा भवन को समर्पित विशेष डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किया जाएगा। स्मारिका और कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया जाएगा। समारोह के चारों दिन आम जनता के लिए कार्यक्रम खुले रहेंगे। समापन समारोह में केरल के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर अतिथि होंगे। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में बात केरलम के विजयम सी पोर्ट पर हुए विकास कार्यों की।
3: विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट 2047 तक विकसित भारत के विजन को सपोर्ट करने वाले एक अहम समुद्री गेटवे के तौर पर उभर रहा है। इंटरनेशनल ईस्ट वेस्ट शिपिंग रूट के पास रणनीतिक रूप से स्थित इस पोर्ट की गहराई लगभग 20 मीटर है, जिससे ये दुनिया के कुछ सबसे बड़े कंटेनर जहाजों को संभालने में सक्षम है। कमर्शियल ऑपरेशन दिसंबर 2024 में शुरू हुए और मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पोर्ट का उद्घाटन किया। विजिंजम ने अपने पहले साल में ही 1 मिलियन TEU यानी 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट और सिर्फ 18 महीनों में 2 मिलियन TEU का आंकड़ा पार कर लिया, जो एक ग्लोबल ट्रांसशिपमेंट हब के तौर पर इसके तेजी से उभरने को दर्शाता है। अगस्त 2026 में पूरी तरह से एक्जिम ऑपरेशन शुरू होने के साथ ये पोर्ट अब भारतीय निर्यातकों और आयातकों के लिए एक सीधा समुद्री गेटवे उपलब्ध करा रहा है।
4: न्यू एज डेवलपमेंट का सिंबल ये विजिंजम डीप वाटर सी पोर्ट है। इस सी पोर्ट को 8,800 करोड़ रुपीज की लागत से तैयार किया गया है। अभी इस ट्रांसशिपमेंट हब की जो क्षमता है वो भी आने वाले समय में बढ़कर के 3 गुनी हो जाएगी।
3: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दक्षिण भारत के एक प्रमुख निर्यातक श्री सुरेश मैथ्यू ने कहा,
5: इन माय ओपिनियन विजिंजम इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर नॉट ओनली फॉर ट्रिवेंट्रम और केरला। Kerala, but for the whole of India. If even a fraction of shipments presently handled through the foreign ports like Colombo, Jebel Ali in Dubai or Singapore could be brought back to Vizhinjam, I'm sure that we can create enormous value within India.

0: ट्रेड, लॉजिस्टिक्स एंड एम्प्लॉयमेंट, इवन अलाइड इंडस्ट्रीज।
1: अपनी बढ़ती क्षमता, सीधे एक्जिम कनेक्टिविटी और विश्व स्तरीय आधारभूत ढांचे के साथ विजिंजम वैश्विक समुद्री व्यापार में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए तैयार है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पुनरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह।
2: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर उपलब्ध हैं।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: जालिम लोशन, दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपना समर्थन दोहराया है। साथ ही अफगानिस्तान के लोगों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है। भारत ने यह बात रूस के मॉस्को में आयोजित 8वें मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन ऑन अफगानिस्तान में कही। एक रिपोर्ट।
3: भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार और संयुक्त सचिव डॉक्टर एम सुरेश कुमार ने किया। बैठक में रूस, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने किया। बेलारूस और मिस्र ने अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। रूस के विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रतिभागियों ने काबुल के साथ समानता और पारस्परिक लाभ के आधार पर सहयोग बढ़ाने था अफगानिस्तान को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने की दिशा में समर्थन देने की जरूरत दोहराई। रूस के विदेश मंत्री सरगोई लावरोव ने कहा कि यह मंच उन देशों को एक साथ जोड़ता है जो अफगानिस्तान के साथ समान और पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी की उम्मीद करते हैं। मॉस्को फॉर्मेट की स्थापना वर्ष 2017 में अफगानिस्तान में सुलह और शांति को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। समाचार कक्ष से विकास नापा।
2: यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया है। सरकारी बलों ने लाल सागर के तट पर प्रमुख रणनीतिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में लेने का दावा किया है। राष्ट्रपति परिषद के अध्यक्ष राशद अल अलमीमी ने इस अभियान को औपचारिक रूप से ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन नाम दिया है। इसका उद्देश्य हूती नियंत्रण वाले इलाकों को वापस लेना, सरकारी संस्थाओं को बहाल करना और राजधानी सना पर फिर से नियंत्रण हासिल करना है। क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला मुकाबला आज लखनऊ में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद प्रियंका। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच हुए समझौतों को हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने सुर्खी बनाया है। लोकसत्ता ने लिखा है, स्विट्जरलैंड के साथ भारत का बड़ा समझौता, 10 लाख नौकरियां और 100 अरब डॉलर का होगा निवेश, महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते यौन अपराधों और दुष्कर्म पर सर्वोच्च न्यायालय की सख्ती को नवभारत टाइम्स सहित अधिकांश अखबारों ने प्रकाशित किया है। बकौल अमर उजाला, न्यायालय ने कहा, कानून का खौफ पैदा करे पुलिस तब थमेंगे महिलाओं के खिलाफ अपराध। अपराध रोकना महत्वपूर्ण, बाद की कार्रवाई नहीं। तनाव के इलाज की राह खोजने वालों को नोबेल, राजस्थान पत्रिका ने लिखा है। 3 वैज्ञानिकों को कोशिकाओं पर नियंत्रण से जुड़े काम के लिए चिकित्सा का संयुक्त पुरस्कार।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीट और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से 8 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति समर्थन दोहराया। अफगानिस्तान के नागरिकों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: सौ 4 मेगाहर्ट्ज पर इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी।

नमस्ते बरेली, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम में और उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना और अपनों का ख्याल भी रख रहे होंगे।

और साथ ही जैसा कि हम जानते हैं कि 6 अक्टूबर का ये दिन और ये सुबह हमारे बरेली के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आई है। जी हां, एक तरफ जहां बाबा बनखंडी नाथ मंदिर में गणेश पूजन के साथ हमारे झुमका सिटी के ऐतिहासिक रामलीला मेले का शंखनाद भी हो चुका है, तो वहीं दूसरी ओर बात करें तो सरकारी स्कूलों के बच्चे अब हाईटेक स्मार्ट क्लासेस में पढ़ाई कर रहे हैं। और हाँ, अगर आपका कोई सरकारी काम रुका हुआ है तो परेशान मत होइए, क्योंकि सरकार आपके द्वार योजना के तहत अधिकारी खुद आपके इलाके में आ रहे हैं। तो चलिए इस ताजगी और उमंग के साथ बढ़ाते हैं आज की सुबह का ये कारवां।

एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम नमस्ते बरेली में। और जब अच्छी खबरों की बात कर रहे हैं तो आपको बता दें कि श्यामगंज फ्लाईओवर के नीचे शानदार नाइट मार्केट पटेल चौक पर स्काई वॉक और हम सबकी पसंदीदा अक्षय विहार झील का कायाकल्प बेहतरीन प्रोजेक्ट्स अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। तो बिल्कुल सुबह और शाम घूमने फिरने के लिए बरेली वालों को एक नए शानदार जगह मिलने वाली है। और इतना ही नहीं, रात के समय और बात करें अलग अलग शहर के जो प्रमुख चौराहे हैं उनको रोशन करने के लिए हाई मास्ट लाइटें और फसाड लाइटें लगाने का जो काम है वो लगभग पूरा हो चुका है। तो हुआ ना हमारा बरेली एकदम हाईटेक। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो बरेली में जिला प्रशासन ने सरकार आपके द्वार सेवा शिविर अभियान की शुरुआत कर दी है और इसके तहत बड़े सरकारी अधिकारी सीधे ग्रामीण इलाकों और अलग अलग ब्लॉकों में जाएंगे, जनता के बीच चौपाल भी लगा रहे हैं। लोगों की आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र या सरकारी योजनाओं के स्वीकृति पत्र के लिए अब शहर के बड़े दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे बल्कि मौके पर ही उनका जो काम है वो हो रहा है। तो अगर आपका कोई सरकारी काम अटका पड़ा है तो खुश हो जाइए, अब आपको साहब के दफ्तर पर नहीं जाना पड़ेगा बल्कि वो खुद आपके दरवाजे पर आ रहे हैं। तो सरकार आपके द्वार कैंप के जरिए

इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली और प्रोग्राम का नाम है नमस्ते बरेली। सुबह सुबह बाबा बनखंडी नाथ का नाम लीजिए, क्योंकि बरेली के आसमान में अब रामलीला मेले की रौनक छाने वाली है। बिल्कुल गणेश पूजन के साथ मेले की शुरुआत हो चुकी है और जैसा कि हम जानते हैं कि बरेली की सांस्कृतिक धरोहर प्रसिद्ध बाबा बनखंडी नाथ मंदिर में विधि विधान से गणेश पूजन के साथ ऐतिहासिक श्री राम लीला मेले का शुभारंभ हो गया है और पूरा शहर अब भक्ति और मेले के रंग में रंगने को तैयार है। तो कहा जा रहा है कि भारी भीड़ की मौजूदगी में शुरुआत हुआ ये मेला अगले कई दिनों तक शहर का मुख्य आकर्षण बना रहेगा।

और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे अपने शहर बरेली के नौनिहाल अब सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे बल्कि डिजिटल क्रांति का हिस्सा भी बन रहे हैं। और शहर के 14 गवर्नमेंट स्कूल बच्चे जो हैं वो अब डिजिटल बोर्ड पर ABCD और मैथ की थ्योरी भी पढ़ रहे हैं, तो है ना कमाल की बात। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें जो 14 गवर्नमेंट के स्कूल हैं वहां पर स्मार्ट क्लास प्रोजेक्ट का जो दूसरा चरण है वो पूरी तरह से सफल हो चुका है और अब स्कूल के बच्चे पारंपरिक ब्लैक बोर्ड की जगह डिजिटल 3D एलिमेंट एनिमेशन और वीडियो के जरिए मुश्किल से मुश्किल थ्योरी को भी चुटकियों में समझ रहे हैं। तो अब सरकारी स्कूलों का ये कायाकल्प पूरे हमारे बरेली के लिए एक बहुत ही मिसाल बनकर सामने आ रहा है।

और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शहर को स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा बनाने के लिए नगर निगम ने आमजन को जोड़ने की योजना शुरू कर दी है और कई कार्यक्रम इसके लिए शुरू किए जा रहे हैं। अक्षर विहार में विशेष स्वच्छता पौधारोपण और डेलापुर में कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। तो अक्षर विहार पार्क में 25 मिनट का श्रमदान किया जाएगा जिसमें बहुत सी संस्थाएं भी शामिल होंगी। वहीं उत्तर मध्य रेलवे की आगरा मंडल में पलवल मथुरा जंक्शन रेलखंड पर मथुरा जंक्शन और भूतेश्वर स्टेशन के रीमॉडलिंग कार्य की वजह से ब्लॉक लिया जाएगा और इसकी वजह से 4 ट्रेनें निरस्त रहेंगी। 1 ट्रेन नियंत्रित और 2 शॉर्ट टर्मिनेट और शॉर्ट ओरिजिनेट कर चलाई जाएंगी। वहीं अगर हम आज के मौसम की बात करें तो मौसम विभाग की माने तो आज दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक जाएगा और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री तक रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। रात और सुबह के समय हल्की सी गुलाबी ठंडक का एहसास और इस सुहाने बदलते मौसम में आप अपना ख्याल भी रखिए। वहीं अगर हम देखें तो वक्त बदला, पीढ़ियां बदली, शहर का विस्तार हुआ, लेकिन चौधरी तालाब की रामलीला की परंपरा बिल्कुल नहीं बदली है। बिल्कुल आपने सही सुना, इज्जत नगर की इस रामलीला का जो इतिहास है ना, वो 458 साल पुराना बताया जा रहा है और इस बार भी इसका आयोजन किया जा रहा है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसका मंचन राधेश्याम रामायण के बजाय रामचरित मानस की चौपाइयों पर आधारित है।

अभी आप सुन रहे थे नमस्ते बरेली 100.4 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी बरेली पर, और 8:45 हो चुके हैं। लीजिए सुनते हैं लोकगीत कमला देवी की आवाज में।

0: अभी आपने सुना इंदु शर्मा की आवाज़ में ये लोकगीत। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 FM पर। और अब लीजिए सुनिए सेहत की बात गंगाचरण हॉस्पिटल के चिकित्सक के साथ।
1: लीजिए सुनिए गंगाचरण आर्यवर्धन हॉस्पिटल कंपनी गार्डन के सामने रामपुर बाग बरेली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की बात गंगाचरण हॉस्पिटल के चिकित्सक के साथ।
2: रोगियों के संपूर्ण आधुनिकतम इलाज का उच्चीकृत किफायती अस्पताल गंगाचरण आर्यवर्धन हॉस्पिटल।

0: कंपनी गार्डन के सामने, रामपुर बाग, बरेली।
1: इमरजेंसी सेवाओं के लिए हमारा फोन नंबर
0: 9675223333।
2: कार्यक्रम है सेहत की बात गंगाचरण हॉस्पिटल के डॉक्टर के साथ, और मेरे साथ मौजूद है प्रोग्राम में डॉक्टर शकील अहमद। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: शुक्रिया
2: डॉक्टर साहब। चूंकि बदलता मौसम है, समस्याएं बदलती हैं और परिस्थितियां भी बदलती हैं, लेकिन इस मौसम में सबसे ज्यादा जो परेशानी देखने में आती है वो है फॉलेज अथवा लकवा की बीमारी की, और आप न्यूरो सर्जन है, MSMCH है, तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि लकवा या फॉलेज किस तरह की समस्या होती है, किस तरह की बीमारी है ये।
3: लकवा या फॉलेज दो तरीके से प्रेजेंट करती है, जैसे पेशेंट की नस ब्लॉक हो जाए या नस बस्ट कर जाए या रप्चर कर जाए, जैसे कहते हैं नस फट जाना
2: जी।
3: तो उससे पैरालिसिस हो जाती है, जिसे हम कहते हैं फॉलेज का अटैक या फिर लकवा कह सकते हैं या फिर स्ट्रोक जो भी कहते हैं। तो उसके वजह से पेशेंट के एक तरफ के हाथ पैर चलना बंद हो जाते हैं, आवाज़ बदल जाती है, कभी कभी मुँह टेढ़ा हो जाता है, ये सब चीज़ें होती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऐसे पेशेंट जो ऑलरेडी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खा रहे हैं
2: जी,
3: वो अक्सर ये कहते हैं कि हम जब भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है तब खा लेते हैं, तो ऐसा ना करें। जो भी ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हैं वो रेगुलर खाएं, उसे छोड़े नहीं, अब बीच बीच में अपना ब्लड प्रेशर चेक भी करा लें। अब भी जैसे मौसम बदल रहा है
2: जी,
3: तो जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे ब्लड प्रेशर नॉर्मल का बढ़ जाता है, 5 to 10 mmHg बढ़ जाता है। इसलिए स्ट्रोक के पेशेंट ज़्यादा देखने को मिलते हैं इस दौरान जब ठंड बढ़ती है। ऐसे ही हार्ट अटैक के पेशेंट भी होते हैं जो ठंड में बढ़ जाते हैं। इसलिए जो भी पेशेंट ब्लड प्रेशर के हैं वो प्रॉपरली दवाई लें
2: जी।
3: ये और जब भी अगर ऐसा अटैक हो तो कभी कभी जब नस ब्लॉक होती है, अगर वो पेशेंट 4.5 घंटे से पहले गोल्डन आवर्स कहते हैं उसे, अगर वो आ जाते हैं तो कभी कभी अगर नस ब्लॉक है तो उसे खोला जा सकता है दवाइयों के सहारे या फिर इंटरवेंशन के सहारे
2: जी।
3: तो ये मैसेज है कि ऐसे कोई भी पेशेंट जो स्ट्रोक के हैं, जिनको ऐसा लगे कि सडनली उनके घर में कोई बुजुर्ग महिला है या कोई आदमी है, तो सडनली उनका मुंह टेढ़ा हो जाए, एक तरफ हाथ पैर कमज़ोर हो जाए या हाथ पैर में सूनाहट बहुत ज़्यादा लगे या फिर ऐसा लगे हाथ पैर उठ ही नहीं रहा है या फिर बेहोशी हो गई, कभी भी ऐसा लगे और सडन हुआ हो तो तुरंत अपने डॉक्टर से मशवरा लें।
2: डॉक्टर साहब ऐसा होता क्या है सर्दी के मौसम में शरीर के अंदर, जो कि जो स्ट्रोक या फॉलेज या लकवा की बात आप कर रहे हैं इसका अटैक हो जाता है लोगों को?
3: इसमें सबसे बड़ा होता है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होते हैं नॉर्मली, एक ब्लड वेसल्स थोड़े से और हार्मोन्स के चेंजेस होते हैं जिसके वजह से ठंड में अक्सर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, मॉर्निंग टाइम में ब्लड प्रेशर बढ़ता है
2: जी।
3: इसीलिए आप देखेंगे अर्ली मॉर्निंग अटैक्स ज़्यादा होते हैं, हार्ट के भी ब्रेन के भी। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता है
2: जी।
3: ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ऐसे पेशेंट जो ओल्ड एज हैं उनमें नॉर्मली जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ता है। जब वो कमज़ोर एरिया से गुजरेंगी, ब्लड फ्लो गुजरेगा, तो वो रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसे पेशेंट अक्सर ठंड के दौरान ज़्यादा प्रेजेंट करते हैं स्ट्रोक के, इसलिए क्योंकि वो रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं ठंड में।
2: बुज़ुर्गों की बात तो डॉक्टर साहब समझ में आती है कि एक उम्र के बाद नसें जो है वो सिकुड़ती भी हैं और उनमें कमज़ोरी भी आ जाती है, लेकिन युवाओं में भी स्ट्रोक की समस्याएं देखने को मिल रही है, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप?
3: युवाओं में नॉर्मली अगर कहें कि हम स्ट्रेस लाइफ ज़्यादा हो गई है तो अर्ली चेंजेस मिल रहे हैं कि उनमें ब्लड प्रेशर चेंजेस आ रहे हैं। कभी कभी ऐसे पेशेंट होते हैं जिसमें स्ट्रोक की प्रॉब्लम होती हैं यंग पेशेंट में भी, तो वो रीनल हाइपरटेंशन होता है, किडनी की वजह से कोई परेशानी हो तब ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है पेशेंट का, तो उसमें भी लोगों को अर्ली अटैक्स आते हैं। या फिर स्ट्रेसफुल लाइफ, स्ट्रेसफुल लाइफ एक बहुत ज़्यादा बड़ा कारण है किसी भी हार्ट अटैक का, स्ट्रोक का, ये ज़्यादा कारण। फिर दूसरे कुछ चीज़ें जैसे अल्कोहल का सेवन है, स्मोकिंग है या फिर कोई भी ऐसे पदार्थ जो स्टिमुलेट करता है ब्रेन को, वो उसके वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं पेशेंट्स में।
2: यानी स्ट्रेस अगर कम कर दी जाए, मनुष्य कम कर ले तो बचा जा सकता है।
3: हाँ, तो इससे ही बहुत बेहतर एक तरीका है इससे बचने का कि आप स्ट्रेसफुल लाइफ अवॉइड करिए, कोशिश करिए कि आप खुश रहने की कोशिश करिए और जो भी प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन हाँ चीज़ें चेंजेस हो सकते हैं और आज के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा सबको ही स्ट्रेस बढ़ता है, तो इसीलिए प्रॉपर अपना चेकअप कराते रहें। बीच बीच में अगर कभी लगे कि ऐसा है जो चीज़ संभली नहीं जा रही है, ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ रहा है, दवाइयों से कंट्रोल हो रहा है, तो पूरा एग्जामिनेशन करा लें कि दवाइयों से कंट्रोल है, ठीक है, अगर नहीं हो पा रहा है तो दवाई बढ़ेगी, दवाई अवॉइड ना करें, ऐसा चीज़ है।
2: तो फिलहाल तो हम अपने श्रोताओं का स्ट्रेस कम करना चाहेंगे।

0: कार्यक्रम के माध्यम से और सुनवाना चाहेंगे कार्यक्रम में, वो पहला गीत जो आपको बहुत पसंद हो?
1: एक गाना है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है।
0: वाह भाई वाह डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर गीत है। हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं अनंता खान की आवाज में।

0: डॉक्टर साहब, स्ट्रोक फॉल इज या लकवा एक ऐसी समस्या है जो एकदम से अकस्मात होती है और लोग परेशान हो जाते हैं। हम उन लोगों के बारे में ज़रूर आपसे बात करना चाहेंगे जो डायबिटीज़ या शुगर जैसी बीमारी के साथ जीवन जी रहे हैं। उनमें क्या वाकई में ज़्यादा खतरा होता है इस समस्या का?
1: हाँ, शुगर का पेशेंट है ये, तो उसमें नॉर्मली कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा होता है। कभी कभी डायबिटीज़ की वजह से नसें कमज़ोर होने लगती हैं, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा डिपॉजिट होता है, तो उनमें रप्चर होना से ज़्यादा ब्लॉक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं वेसल्स के, जो हमारे ब्रेन की वेसल्स हैं जो वहाँ पे धमनियाँ जा रही हैं उसमें ब्लॉक ज़्यादा हो सकते हैं। तो स्ट्रोक के पेशेंट डायबिटीज़ वाले पेशेंट में भी ज़्यादा होते हैं। ब्लड प्रेशर भी एक कारण है, लेकिन डायबिटीज़ भी अपना एक कारण है। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ा हुआ है बॉडी में, तो कहते हैं ना एकदम कहीं कोई पेशेंट जो है ना काम वगैरह नहीं कर रहे, स्टैग्नेंट लाइफ है, लाइफस्टाइल ऐसा है बिल्कुल बैठे रहते हैं, तो उसमें ज़्यादा कौन रहते हैं कि डायबिटीज़ के लिए प्रोन होते हैं पेशेंट। तो एक्सरसाइज प्रॉपर योगा वगैरह एक्सरसाइज को जो है वो कर सकते हैं उससे अवॉइड करने के लिए। अपने शुगर मेंटेन करें, ब्लड प्रेशर मेंटेन करें तो बचा जा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है पेशेंट में कि अब रप्चर हो गया या फिर ब्लॉक हो गई, तो अब क्या किया जाए? तो अगर छोटी सी ब्लीड है या छोटा सा फालिस का अटैक है तो वो दवाइयों से कंट्रोल हो जाता है। अच्छा। और हल्के हल्के पेशेंट इम्प्रूव हो जाते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा उनमें फिजियोथेरेपी या कुछ भी और अलग मूवमेंट कराने पड़ते हैं तो उससे बेहतर हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है या फिर इतना बड़ा इन्फेक्ट होता है उसमें ऑपरेशन भी करना पड़ता है। ये ऑपरेशन किसी तरीके से भी कर सकते हैं, बड़े सर्जरी से होते हैं, एंडोस्कोप से होते हैं, बहुत तरीके से कर सकते हैं इसको।
0: आपने गोल्डन आवर्स की बात की, शुरू के 4 घंटे, अगर लकवा या फॉलिस का स्ट्रोक है और शुरू के 4 घंटे में इलाज मरीज को मिल जाए तो वो पूरी तरह ठीक हो सकता है, ऐसा आपने कहा डॉक्टर साहब, वो 4 घंटे क्यों गोल्डन आवर्स कहे जाते हैं इस बारे में बताइए, और इन 4 घंटों में आखिर कौन सा ऐसा इलाज हो सकता है?
1: स्पेशली 4.5 घंटे जो साइंटिफिकली कहा जाता है गोल्डन आवर्स इसलिए कहा जाता है, 2 तरीके स्ट्रोक जैसे मैंने बताया, नस किसी की रप्चर हो जाए और ये नस किसी की ब्लॉक हो जाए। अगर नस रप्चर हो गई तब उसमें कुछ नहीं कर सकते।
0: अच्छा।
1: लेकिन अगर नस ब्लॉक हो गई किसी की, हमने देखा सीटी स्कैन कराया और पेशेंट के हाथ पैर नहीं चल रहे हैं और हमने कोरिलेट करा कि इसमें हाँ एक इंजेक्शन आ जाए, थ्रोम्बोलिसिस कहते हैं, पहले हार्ट के पेशेंट में भी करते थे, अब तो एंजियोप्लास्टी वगैरह भी करते हैं, ऐसे ही ब्रेन में भी पेशेंट में होता है कि अगर कोई नस ब्लॉक हो गई तो उसमें इंजेक्शन देकर, थ्रोम्बोलिसिस कहते हैं उसे।
0: अच्छा।
1: कोई थ्रोम्बस फन गया, कोई थक्का जम हो गया तो उसको लाइज कर देना, उसको तोड़ देना दवाइयों के सहारे, वो कर देते हैं। या फिर कोई अगर हॉस्पिटल में अवेलेबिलिटी है तो

0: जैसे दिल की एंजियोग्राफी होती है वैसे ब्रेन की एंजियोग्राफी होती है।
1: अच्छा,
0: अगर नस कोई ब्लॉक हो गई है तो उसमें से क्लॉट निकाला जा सकता है, उसमें स्टैंड भी डाला सकता है, या कोई कभी कभी रप्चर होती है छोटी छोटी वेसल्स एनरिज्म जिसे कहते हैं उनके अंदर क्वाइल भी डाली जा सकती है, उन्हें ब्लॉक करा जा सकता है। ब्लीडिंग जो हो रही है वो अलग एक केस होते हैं, जो एनरिज्म रप्चर होते हैं वो भी हाइपरटेंशन की वजह से होते हैं। तो उनमें कभी कभी जो लैब अवेलेबल है उसके थ्रू हम क्वाइल डाल सकते हैं, थ्रोम्बस निकाल सकते हैं, तो इससे बचा सकता है। लेकिन जो 4.5 घंटे होते हैं ब्रेन के सर्वाइवल के लिए, अगर कोई नस ब्लॉक है बड़ी और हम अगर वो क्लॉट निकालें तो उसको बचा सकते हैं, उस ब्रेन के एरिया को। अगर वो 4.5 घंटे निकल गए तो नॉर्मली वो ब्रेन एरिया डैमेज हो गया तो उस एरिया को बचाया नहीं जा सकता, दोबारा नहीं बनाया जा सकता। तो इसलिए उसे गोल्डन आवर्स कहते हैं कि उस टाइम में अगर पेशेंट आ जाए, थ्रोम्बोलाइज करें, थक्का डिजॉल्व हो जाए, तो पेशेंट के इम्प्रूवमेंट के साथ बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जैसे डिजीज से पहले था। रिकवरी के चांसेस होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा, कॉस्टली होता है, लेकिन अगर किसी को पेशेंट को फालिस लगवा हो गया, वो लगातार बेड पे ही रहा, तो उससे ज़्यादा उसे कॉस्टली पड़ेगा। ये थोड़े इंजेक्शन कॉस्टली होते हैं लेकिन हाँ अफोर्डेबल हैं, कोई ऐसा नहीं है। और बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, इंश्योरेंस होते हैं किसी के, या फिर आयुष्मान भारत, इन सब से हो जाता है।
1: यानी जीवन बहुमूल्य है ये सभी जानते हैं, और जीवन से ज़्यादा मूल्यवान कुछ भी नहीं होता। तो जीवन अगर सुरक्षित है, अच्छी तरह व्यक्ति जी रहा है, तो पैसे का कोई मूल्य वास्तव में नहीं है। डॉक्टर साहब, चूँकि बात बहुत बड़ी है, ये जो फालिज लकवा की बात है और बहुत सीमित समय कार्यक्रम का होता है, हम दूसरा गीत भी आपकी पसंद का अपने श्रोताओं को ज़रूर सुनवाना चाहेंगे। अब कौन सा गीत सुनवा रहे हैं आप?
0: पीके मूवी का गाना है, सोनू निगम ने गाया है, भगवान है कहाँ रे तू, बहुत ही बेहतरीन गाना है
1: जी। तो लीजिए श्रोताओं, सुनिए डॉक्टर शकील अहमद की पसंद का ये गीत जिसे सोनू निगम ने गाया है। और अगले कार्यक्रम में डॉक्टर शकील अहमद से जानेंगे और बहुत सी बात। तब तक के लिए मुझे यानी मुकेश कुमार पांडे को डॉक्टर शकील अहमद के साथ दीजिए अनुमति। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए।

0: आप सुन रहे थे गंगा चरण आर्यवर्धन हॉस्पिटल कंपनी गार्डन के सामने रामपुर बाग बरेली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की बात गंगा चरण हॉस्पिटल के चिकित्सक के साथ।
1: और इस समय आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी बरेली 100.4 FM पर और अब लीजिए सुनिए विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

चित्रलोक कार्यक्रम में आइए सुनते हैं जीरो फिल्म से ये गाना, अभय जोधपुरकर की आवाज में, इरशाद कामिल के बोल, अजय अतुल का संगीत।

आइए सुनते हैं दिलवाले फिल्म से अगला गाना, अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की आवाजों में अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और म्यूजिक है प्रीतम का।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आज का चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न होता है, दीजिए सुदक्षिणा को इजाजत।

0: यह है विविध भारती।
1: आज के फनकार, ये प्रोग्राम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विशाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। उस बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

0: बंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। लेकिन दोस्तों, विनोद खन्ना का जन्म मुंबई में नहीं हुआ था, उनका जन्म हुआ था 6 अक्टूबर सन 1946 को पेशावर में, जो आज पाकिस्तान में मौजूद है। विभाजन के बाद विनोद खन्ना का परिवार आ गया मुंबई। यहां दिल्ली, मुंबई और देवलाली में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। वैसे ये आपको बताना हम जरूरी समझते हैं कि मुंबई के सिडनम कॉलेज से विनोद खन्ना ने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया था। स्कूल के दिनों में उन्होंने कई नाटकों में हिस्सा लिया और इस तरह पहली बार मंच पर उनकी एंट्री हुई।
1: क्या बदतमीजी है?
2: सुनो भाइयों, सुनो, ये होली को बदतमीजी कह रही है। जो पंचों की राय
3: लड़की को देखा लड़की पसंद है।
0: हालांकि विनोद खन्ना को बचपन से ही खेलों में रुचि थी। टेनिस, फुटबॉल और क्रिकेट के तो विनोद दीवाने रहे हैं। बाद में किशोरावस्था में पहुंचकर उन्होंने कुश्ती यानी रेसलिंग का भी चस्का अपने आप में अपना लिया। हैंडसम पर्सनालिटी के मालिक विनोद खन्ना की बलिष्ठ अदाओं ने लोगों को उनका दीवाना बना दिया।

0: आनंद रहती।
1: उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उनके फिल्मी सफर में कई ऐसे पड़ाव भी आए जो किसी रियलिटी शो की कथानक वाली बात को साबित करते हैं, यानी कथानक की भांति ही लगते थे। सुनील दत्त साहब ने अपनी फिल्म मन का मीत में पहली बार विनोद को मौका दिया और बना दिया फिल्म के नायक सोम दत्त के खिलाफ। नायक इस फिल्म की नायिका थी लीना चंदावरकर।

0: खलनायकी से शुरू हुआ विनोद खन्ना का फिल्मी सफर मील का पत्थर साबित हुआ। मीरा, इम्तिहान, इनकार और लेकिन जैसी भावना प्रधान फिल्में हों या फिर कच्चे धागे, अमर अकबर एंथनी, खून पसीना, हेरा फेरी, डाकू और जवान या फिर आखिरी डाकू और मेरा गांव मेरा देश जैसी हिंसा प्रधान फिल्मों में भी वे खूब जमे और जमकर खूब चले।
1: हाथ आयु ऐसी अनमोल दौलत को छोड़ दो। जब्बर सिंह इतना पागल नहीं है। तू जिस जमाने की बात कर रहा है उससे तो चंबल की गहराइयों में डूबे हुए भी जमाना हो गया है।

अभिनेता विनोद खन्ना के करियर की खासियत ये रही कि उन्होंने हर चुनौती को, हर चैलेंज को स्वीकार किया और निभाया, और बाद में अपने करियर को गंभीर भूमिकाओं के जरिए एक नया मोड़ भी दिया।

फिल्मकार और गीतकार गुलजार ने 1971 में फिल्म मेरे अपने में बतौर नायक के रूप में विनोद खन्ना को चुना, जो उस फिल्म में समकालीन युवाओं का प्रतिनिधित्व करते नजर आए।

यहां से शुरू हुआ विनोद खन्ना के संजीदा अभिनय का सिलसिला, जो रफ्ता रफ्ता जोर पकड़ता रहा और चलता रहा। फिर आई गुलजार की मीरा और इम्तिहान।

इम्तिहान को पास किया और अपने करियर की दूसरी यात्रा में विनोद खन्ना को हासिल हुई लता मंगेशकर की फिल्म लेकिन, जिसमें गुलजार ने उन्हें बेहद चुनौतीपूर्ण और हटकर भूमिका प्रदान की थी। संजीदगी भरे अभिनय का कमाल देखिए कि बिंदास दिखाई देने वाले विनोद खन्ना को फिल्म चांदनी में यह भी पुकारना पड़ा।

0: विनोद खन्ना के रौबदार अभिनय का ये अंदाज भी आपने देखा और सुना होगा दोस्तों।
1: यहाँ एंथनी कौन है?
2: एंथनी नहीं, इधर कोई नहीं है साहब।
3: ओ, बाजू के मामले में होगा, तुम इधर ठहरो, अपन अभी देख के आएंगे।
1: मैंने तुम्हें कहीं पहले भी देखा है।
2: ऐसा क्या?
3: जरूर देखेंगे साहब, अपन बहुत फेमस आदमी, बड़ा बड़ा पेपर में अपन का छोटा छोटा फोटो छपता है, लकी मैन।
1: जिस बुढ़िया को मैंने खून दिया था उसको तुमने भी तो खून दिया था, तुम्हारा नाम भी तो एंथनी है ना?
3: हाँ साहब, पर अपन खाली एंथनी नहीं है, साथ में एक तो गोंसाल्वेस भी लगेला है, एंथनी गोंसाल्वेस, ऐसे बोलने का था ना साहब, हाथ मिलाओ।
0: माना माना दोस्तों, अमिताभ का जमाना था, लेकिन विनोद खन्ना में भी वो तमाम खूबियां मौजूद थीं जो एक सुपर स्टारडम के लिए जरूरी होती हैं। लेकिन जब भी बिग बी और विनोद खन्ना साथ साथ आए, टक्कर बराबर की रही।

0: की है फेरी है।
1: और ये है फिल्म खून पसीना।
0: खून पसीने की तो मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम भूखे ही सो जाएंगे।
1: अमर अकबर एंथनी।

1978 में अपने करियर के चरम पर रहते हुए भी विनोद खन्ना एक खालीपन महसूस कर रहे थे, उससे जूझ रहे थे, अपने भीतर कुछ खोज रहे थे। इसी खोजबीन में विनोद ने शरण ली अध्यात्म की और कई वर्षों तक गुमनामी के अंधेरे में चले गए। 1985 में यानी 1985 में विनोद खन्ना की हुई वापसी, फिल्मों में लौटे और फिर शुरू किया एक्टिंग का सिलसिला। वापसी हुई और जोरदार हुई मुकुल आनंद की फिल्म मिली इंसाफ और राज सिप्पी ने उन्हें मौका दिया फिल्म सत्यमेव जयते में। इसी दौर की फिल्में हैं ये जिनके जरिए विनोद ने फिर वही मकाम हासिल किया जो उन्हें पहले मिला हुआ था।

आगे चलकर फिरोज खान ने विनोद खन्ना को दयावान में बनाया एक डॉन जिसने सभी को अचंभित कर दिया। विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना भी अभिनेता हैं और अपने अपने मुताबिक काम में मसरूफ हैं। हालांकि अक्षय खन्ना को विनोद खन्ना ने लॉन्च किया था, फिल्म थी हिमालय पुत्र।

चल रहा था सिलसिला विनोद खन्ना के एक्टिंग का, और ये खुशनुमा दौर था 1999 में। विनोद खन्ना को फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया।

लेकिन एक बात रही कि उन्होंने अब चुनिंदा फिल्मों में काम करने की ठान ली। आपने उन्हें वांटेड और फिल्म दबंग में सलमान खान के पिता की भूमिका में जरूर देखा होगा।

अपनी इतनी लंबी अभिनय यात्रा के बाद 27 अप्रैल 2017 को गंभीर बीमारी की वजह से विनोद ईश्वर को प्यारे हो गए। दोस्तों, यकीनन जिस्मानी तौर पर बेशक विनोद खन्ना अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी फिल्मों और अदाकारी के जरिए वो हमेशा हमेशा अपने चाहने वालों के दिलों पर राज करते रहेंगे।

तो दोस्तों ये था आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था जाने माने एक्टर विनोद खन्ना पर। इस कार्यक्रम को संपादित और प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने। अब अपने दोस्त राजेंद्र को दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: किसने कहा है? यशोदन, एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
1: यशोदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे की यशोदा आ गई सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

0: अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो वो खींची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
4: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
4: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
4: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
4: ना, बोलो, बोलो।
0: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
5: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम आपकी पसंद में। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं आपके पसंदीदा गानों के साथ। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक प्रतीक, अनिल जयवीर, कालका से शुभचंद बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज।

आप सभी श्रोताओं के नामों को शामिल करते हैं। ये हैं बड़ा बम चौक खंडवा एमपी से ममता, मार्कंडे संजय और बेबी किट्टू भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। कोरिया से डोनट पाबो, छत्तीसगढ़ से प्रभा जयपुरिया, गोरैया जालंधर से अशोक जाटव। और हमारे सभी श्रोता जलालाबाद वेस्ट से सुरेश कगनेजा, पूनम विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा, रिंगने छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता किसू तासु, अर्णव सत्यमानंद, बोर्डागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत, पद्मा टॉकेज नेपानगर एमपी से सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर कुशल, नीति सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगला बेन शाह, राजेंद्र जी शाह भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। अररिया बिहार से हैं सोमिया नजमीन, रुकैया आफरीन, रिहाना प्रवीण, माहे आरजू, गांव बिठोरा भोयर तहसील मंगूर पीर जिला वाशिम पश्चिमी विदर्भ से योगीराज मस्के, श्रीहरि इंदुमती मल्हार, कविता मोहन, विशाल कुशल, गोपाल श्याम, गोविंद मस्के और इनके साथी। उत्तम नगर दिल्ली से हैं बोधराज खुरवाल, कमला रानी, गीतिका और भानु प्रकाश। चंदौसी रोड चमनपुरा यूपी से मुकेश गौतम, सुनील गौतम, अमन गौतम। बुद्धनगर खंडवा से नदीम और राजू। दुर्गे कॉलोनी हासी हरियाणा से हैं राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष योगी, डब्बू और बब्बू। पूजा रेडियो श्रोता संघ पलेरा हॉल टीकमगढ़ एमपी से राजेश कुमार अकेला, यशोदा, राजीव और संजीव। आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष कुमार मुजफ्फरपुर बिहार से हैं। पुराना तालाब डुमराव से वली उल्ला अंसारी, आसमाना शबनम। जेल रोड बक्सर से राज, एसडी अजनबी, फातिमा राज, डोंडी लोहरा, बालोद छत्तीसगढ़ से दयाशंकर, प्रभा देवी जयपुरिया। सेक्टर 17 दिल्ली से हैं माया राजौरा और रमेश्वर दास राजौरा। बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु। नाज रेडियो क्लब करेली से निसार अहमद अंसारी, महजबी नुजहत, फातिमा अब्रार अहमद, इसरार अहमद, इकबाल अहमद, असीम वसीम अंसारी, पप्पू भाई और इनका पूरा परिवार। उन्हें जिला उज्जैन एमपी से भेरूलाल वाकतड़िया, भोला प्रवीण, रियांश और प्रतीक। नागपुर महाराष्ट्र से कमल स्वाने, डॉक्टर हाजी अफजल, संदीप रामगढ़ कैंट झारखंड से निपी स्वाने। और ये है राजकमल रेडियो श्रोता संगाष्टी। जिला जालना मराठवाड़ा से सैयद यूनुस, सैयद नुमान, तनवीर मसरत, सैयद निजामुद्दीन, रामभाव तांदले, धोता जोड़ा आष्टी से दशरथ सागुते और अनुष्का सागुते। ग्राम और पोस्ट हरहरपुर मटकली जिला बरेली से शारुन नूर अंसारी, फरियाद हुसैन, शकील अहमद, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज, ज्योति और रेयांश। जिला मुरादाबाद दुलापुर यूपी से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, राजपाल, काजल, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। जसपुर उत्तराखंड से रियाजत हुसैन सदीकी, नाजमा बेगम, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रुहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर। हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान और इरफान खान। नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद पराग, पूना राम देवांगन, कृष्णा देवांगन पलारी छत्तीसगढ़ से हैं। तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद, मोहम्मद दानिश मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से हैं। भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल, अजीत, आयुष और नंदिनी। धमदी ग्राम सुखरी कला से अमित, शकुन, आरुषि, ओशिका, आरवी और अंजलि। धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद, आलिया, अयान। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखबीर सिंह जौड़ा।

सिटी दीवाना और गुरवंश सिंह जौड़ा। तो चलिए आप सभी की पसंद का ये गाना और प्रोग्राम का पहला गाना सुनते हैं। फिल्म का नाम है विजयपथ, जिसमें आवाज है अलका याग्निक और कुमार शानू की।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1 लाख दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: और इस समय आपने आकाशवाणी बरेली ट्यून इन किया है 100.4 FM पर। प्रोग्राम का नाम है आपकी पसंद। और आप अगला गाना सुनेंगे आप सभी की पसंद का, गांव कड़ी कोटाहा जिला पंचकुला हरियाणा से, और गढ़ी कोटाहा से ये हमारे श्रोता सराज अद्वीन अंसारी, नसीबन बेगम, अकरम शानिया, मोहम्मद इलियास, मुशाहिद, अक्सा, आयशा, उमर और शमीना। गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार और पुष्पेंद्र। गांव लोहडेडा जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, मुनेश देवी, अर्जुन, अंजलि, नितिन मोहन, भुवनेश्वरी देवी, सुधीर नूतन, रमानंद कश्यप। करावल दिल्ली से रामनाथ प्रजापति और सुमन देवी। जिला मुरादाबाद ग्राम धोलापुर यूपी से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, इसरार, नरगिस खातून। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंग्या, नमन और अपार ढिंग्या, अंजुमन खान बहेड़ी से हैं। गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जाहिरा बेगम, मोहम्मद अयान, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद यासीन अंस हाशमी। और ये है रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी आलोट मालवा से रतलाम से जगदीश धाकड़, नाइमा रंजुबाई, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी, विनेश कुमार श्रीवास्तव, रागिनी मुस्कान बैंक सेंटर चनेटी बरेली से, शंकरपुर पोस्ट उसावा जिला बदायूं से सोमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र, आनंद, सनोज, अमन, सोनी, अंकिता, विनीता, अनीता, सुनीता और सूरजश्री यादव। वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से जिशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख, करुणा मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया और शुएब खान। सादुल शेर राजस्थान से रामकुमार रिवाड़ और चंद्रकला रिवाड़। मोहल्ला हलवायान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी बिट्टू, साजदा, हिना कौसर। कस्बा मीरगंज बरेली से आदर्श दिवाकर, लव, ओमिंद्रपुरी और कल्लू मिस्त्री। गांव बेरा जिला बमीतरा छत्तीसगढ़ से प्रहलाद सिंह वर्मा, मालती विनी, अनी शुरू और चकवती वर्मा भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष, मनीष, अंशिका, यूनुस, सोफिया बीजना मुरादाबाद से हैं। सुल्तान पोखर फारिस बिजगंज बिहार से कृष्णमोहन यादव, माया रानी, कंचन, शिवकांत। पंजाब रामटेके यशोधरा, रामटेके श्राव्या, सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से हैं। नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरव, रानी ज्योति, गुरमंत कौर और मनु। गांव नगलफेड़ा फगवाड़ा पंजाब से ही हैं बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, राहुल और मनीष। जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना, उमा राज, दिव्या। बेताब रेडियो लिसनर्स क्लब बिहार से वसीम अक्रम, जोई और गुड़िया खातून। ये है ममता मारकंडे, संजय मारकंडे और बेबी किट्टू बड़ा बम चौक खंडवा MP से। अररिया बिहार से सोमिया, नाजमीन, रुकैया, अफरीन, रिहाना, प्रवीण और माहे आरजू। बीड़शेर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता, साक्षी, जयश्री, अंजलि, बालासाहेब, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय, PB कुलथे। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गुंडाने, अर्चना ताई गुंडाने, हीरामण शेंडे और प्रणय प्रसिद्धि। सिद्धार्थनगर दरियापुर बाबली से गजानन येले, नवदीप, विश्वदीप और अवंतिका।

कल्याण मुंबई से किशोर हिवराले सुजाता और प्रतीक हिवराले, साथ ही ये है दीवाना रेडियो श्रोता क्लब बहलोल नगर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से प्रेम भाई सिंह बड़वाल, सुखवीर काजल, लगवीर रानू कृष्णा, चंदो प्रवीर, शीतल नवीन, रंगीला निशांत अनमोल और इनके बेटे चटकू और मटकू, लचनपुर छत्तीसगढ़ से रामजी साहू जीवन लाल, ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और इनका पूरा परिवार। ये है हितेंद्र दास स्टेट आसाम से, मनोहर मगर यामिनी, उद्यन और अर्पिता गोंदर रोड ढूलिया महाराष्ट्र से, देवरी भाटेपारा से केआर साहू, आकाश कमलेश, कन्नूलाल रजक और मुरली क्षत्रिय, मनकारे मंदिर बीजे कॉलोनी करगैना बरेली से बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल, आशीष, अमर सिंह, हितेश, राजेश कुमार, रूबी भारती, एकता, दिव्या, रचना, ओमवती, खनक, शकुन, सारांश, आयांश, अदिति, शिवांश और प्रथव सिंह, गांधी नगर महेश्वर मध्य प्रदेश से श्याम यादव और सोना यादव, जिला खरगोन सनावद एमपी से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना अनुज, आयुषी, रमेश चंद, शेख मुसा भाईजान, राजकुमार बुड़ाना, सुधारमा नगर खंडवा लग से हैं लक्ष्मी नंदिनी, रोहित ऋतु और मुकेश जगताप, बठिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंगर, अंजू नारंग, मोहित और तानिया नारंग, गोपाल नगर अमरावती महाराष्ट्र से शारदा वर्धे, सतीश रिशा और इनका पूरा परिवार, एवरग्रीन रेडियो ग्रुप गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन वीना, डब्बू सम्राट चैतन्य मस्कीन, मेघा आशीष और राजा, मास्टर खेलो परवेज, बेगम इमराना नवाजिश, दानिश, अमन आफरीदी, राधा नाम देव, गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से हैं, राजेंद्र गंगवार, प्रेमपाल, धनवीर, सचिन, अनुज, अनमोल, कमलेश, तुलाराम, अंकुश, राजू, चंद्रपाल, उल्फत, बबलू, वेतपाल गंगवार, संजीव गंगवार, कस्बा क्योलड़िया, नवाबगंज बरेली से हैं, पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता केशु रिधान और तुलसी मस्कीन, पी एस नवारकर, निर्मला, विशाल, नरेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से, मलकापुर से महाराष्ट्र से हैं, नारायण इंगले, सोपान, आशीष मुहरकर, भोजपुरा बरेली ग्राम मजुआ गंगापुर से, हसमुख जी, हसान, समस, इनाया, शानूर, फलकनूर, ताज और मोहम्मद अबान नूर इस गाने को सुनना चाहते हैं। बनवारी लाल कुशवाहा, मंजूलता, राम श्याम, रवि आर्यन और साथी चनोरा जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से। और ये है हमारे श्रोता प्रदीप सलूजा, संगीता सलूजा, प्रथम सलूजा, जनकपुरी नई दिल्ली से इस गाने को सुनना चाहते हैं। और कवर कॉलोनी बड़वा जिला खरगोन एमपी से प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली, उदयपुर राजस्थान से बाबू भाई भारती, रमेश नाचाने, विरीत मिथिला, गोपाल तिलक तांबोली, सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम दिल ने फिर याद किया, सोनू निगम अलका याग्निक की।

सोनू निगम, अलका याग्निक की आवाज, फिल्म का नाम दिल ने फिर याद किया, आपसे ये गाना आपने सुना। और इस समय आप सुन रहे हैं आपकी पसंद 100.4 FM पर, और अब आप सभी के पसंदीदा गानों को हम सुनेंगे। और आप सभी कुलस्वामिनी रेडियो श्रोता संघ भवानी चौक श्रीरामपुर भोकर महाराष्ट्र से हैं हरिभाऊ बिडवे, शुभांगी, श्रवण, अनिकेत और अनीता बिडवे, अजीत कसाना, मायदेवी, ऋतिक, आदित्य ग्राम और पोस्ट लदावली से हैं, कोंच जिला जालौन ग्राम खकल से दीपक सिंह गुर्जर, सत्यम अंशराज और इनका पूरा परिवार, चंद्रपुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से विनय कुमार, कलावती, अनुष्का दुबे और अश्विनी दुबे, बेड़ी एमपी से हुकुम करमकर और सुनीता करमकर, लालकुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू, निशांत, कौशिकी, दीपाली, युवान और आर के राजा, लक्ष्मीपुर सूरजपुर से तीजन सिंह मरावी, सुषमा सिंह मरावी, गजराज सिंह लोधी, कैलाश केसरी, गोपाल ओझा, जितेंद्र धाकड़, अमर सिंह भील, नरेश प्रजापति, ये हैं मधुसूदनगढ़ जिला गुना एमपी से हैं, शेरवानी स्कूल गंज डिंडवारा उत्तर प्रदेश से आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया, उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल, लगान पंड्रिया छत्तीसगढ़ से, गांव बांडी वाला फाजिल का पंजाब से, ओम बगड़िया, क्रियांश रजत और गरिमा। रुपेश संघई, महेश संघई, प्रगेश, प्रतीश और इनका पूरा परिवार, जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभनी महाराष्ट्र से, पंचकुला के सेक्टर 9 से हैं आशुचुक, अश्विनी, गोविंद, टोनी, लवदिवान, राधे, भाविक, ढिंगरा और सेक्टर 11 से हैं अतुल शर्मा, जो कि इस गाने को सुनना चाहते हैं, वो गाना जो आप थोड़ी देर में सुनेंगे, ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से, रामशरण विश्वकर्मा, साहिल, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल,

श्री विश्वकर्मा, गांव चतुपुर कुंदर की मुरादाबाद से एम मुनाजिर खान, फारूक फारूकी फिरासत फारूकी, मुअज्जम मुस्तफा और गौसिया बी, भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव और गरिमा, नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से मास्टर आलिम पटेल, मुजाहिद और नदीम पटेल, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद अदीब, अब्दुल हनान जीनत, नाहिद आयात सिकंदर, मोहम्मद आदिश, मोहम्मद इंतजार, गांव भोजपुर तगा चलकाना सहारनपुर से, एटा रोड गंज डिंडवारा यूपी से बीपी गौतम, सरिता शेख, मोहम्मद कलीम, डीएच बच्चन और ये हैं पाटिल महाराष्ट्र जालना से विजय पाटिल इस गाने को सुनना चाहते हैं। अड़ार नाथघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी राहुल और गोपी वर्मा, सैफी अहमद अंसारी, रईस तुल्हा अंसारी, ईदगाह गेट मुरादा बात से है और ये है कृष्णलाल सलूजा, राधा सलूजा, जनकपुरी नई दिल्ली से, जामनिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक और स्वाति, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा अमित हैप्पी, दुविया निवादा गाजीपुर से प्रतीक रोशनी और प्रांजल, पद्मपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति और भूमिका। मालवा रेडियो श्रोता संघ प्रमिला गंज आलोर जिला रतलाम, एमपी से बलवंत कुमार, राजूबाई, माया शोभा, राहुल ज्योति, अतुल पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा, ये है सफीदो सिटी। हरियाणा से नानक खन्ना, चंचल लवली, रजत लव खन्ना, कुश और इनका पूरा परिवार गांव नथाना पंजाब से ही है। हरजिंदर छंदा, जसवीर जसी, सीता और गीता, गांधीनगर गुजरात से जीके परमार, ज्योत्सना, हर्ष, दीपल, उर्वशी परमार, इसरत खान, शायरा बेगम, रहूफ खान, साबरीन शाहबाज, सैफ, ईशान खान, गंगोला जिला बदायूं से है, अलकनाथ मंदिर के सामने से है, गंगवार बेचूलाल गंगवार, गुड्डी प्रशांत, ज्ञानेंद्र, इला देवी, वर्फा, सुनील, महावीर कश्यप, संजय अश्विनी, बाबू भाई, रमेश चंद, सैनी, गौतम राम, श्रीराम राठौर, पारस, वेदराम, दरोगा जी और राज कश्यप, रंगोली रेडियो लिसनर्स ग्रुप राजनगर मधुबनी बिहार से नवीन सिंह, ज्योति, सुशांत, चुलबुल रानी अनूपपुर मध्य प्रदेश से, जयवंती केवट और अंजलि, ये है खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानकचंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का कोयल, सिक्का डुगू और भाविक सिक्का, पारस मनी रेडियो श्रोता संघ गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी मनीष, खलीफों की बावड़ी खुदा बख्श खलीफा से राम देवरा, दिनेश चौहान और इनका पूरा परिवार, ये है मोहल्ला बारादरी महमूद रामपुर से भाई राफत शाहब और सईद भाई मंसूरी, राशिद, असद, फिरोजा, आशु और नगमा नाज मंसूरी, ये हैं ग्रामर पोस्ट गोठा खंडवा से राम बाबू मिश्रा, कृष्णा देवी, दिलीप मिश्रा, माधुरी, प्रदीप, सविता, सत्यम, शीतल, राधा, सलोनी, शिवम मिश्रा और इनका पूरा परिवार, मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश मैंडी, सौरभ, शाइना, निवान और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा, ओखला संगम विहार दिल्ली से रणधीर गुप्ता, बबिता, सत्यम, सुंदरम और इनका पूरा परिवार, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश चंदन और अंकुश, दिलशाद हुसैन, फातमा सोगरा, वकार हैदर, कनी सकीना, हसीना दिलशाद, मुबारकपुर ऊंचे तकिया, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं, काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी से अर्जुन कुमार, वंदना, विनती, विनायक, मोहित, मोहिनी और कोको रानी, पतली गली बनारस से भाई मुस्ताक सुलेमानी, शाहिद सुलेमानी, मलयान सरधना, मेरठ से अनिल जैन साहब, संयम मुस्कान और जिव्यम जैन भी इस गाने को सुनना चाहते हैं, जिला खरगोन चौकड़ा धाम कॉलोनी सनावत से कृष्णपाल, तारा देवी चौहान, नव उदित, वैभव, ध्रुवी, प्रद्युम और इनका पूरा परिवार, गांव अलीग डांड जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से जोहित, विपिन, आयुष, अतुल और फूल जी यादव, आप सभी की पसंद का जो गाना है वो है लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम हम आपके हैं कौन।

और ये गाना आप सुनेंगे फिल्म बाहुबली से, जिसमें आवाज़ है M.M. किरावनी और पलक मुच्छल की। इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं। ग्राम डरहरपुर खुर्द डाकखाना सादुल्लागंज ब्लॉक समरेर तहसील दातकगंज जिला बदायूं यूपी से नूर हसन आशिक मुजम्मिल ईश्वर हसनैन अदनान अजलान जाकिर हुसैन नफीसा सादिक मुनासिर इनायत और गोलू भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। मन की लोरमी छत्तीसगढ़ से नारायण खांडे रजनी तुषार और समीर अहमदगढ़ मंडी पंजाब से हैं मोहम्मद अनवर अंसारी रवीना आफिया जावेद अख्तर जैस्मीन शकीला सना शमा हिना राजिया सुल्ताना सुराज अंसारी और इनका पूरा परिवार। आसलगांव जिला बुलढाणा महाराष्ट्र से राजू माठे गजानन ज्ञानेश्वर संतोष एस काले अशोक देशमुख फुले भक्त संजय भाऊ प्रकाश दांडगे भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। जिला बरेली करेली से मोहम्मद आमिर अंसारी शमीम अंसारी माहिर नूर नसरीन और शमा ऊंचे गांव नादेड़ महाराष्ट्र से देवानंद शिंदे पाटिल

इनका पूरा परिवार कटराचांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही और स्वाति चमनपुरा, उदयपुर से नजीब खान, साबिहा खानम, फरीदा, जब्बार मोहम्मद, अशरफ खान और निम्मी मंजू, संबलपुर कांकेर से फगुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी, मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगेसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता पलक, लुबना अलजिबा, आयान मंसूरी, यश और नुमैर मंसूरी। नजमुल हुदा एसएम जावेद गुमला झारखंड से हैं और ये हैं हमारे श्रोता परमेश्वर कंकार जी जो कि ये गाना सुनना चाहते हैं। शंकर भाई और बाबा साहेब कांकेर जी भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती, कांति निकेतन, कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, रुद्रा रंगोली गली, राजनगर से फूलो रंगीली, दोरे जगदीश नामदेव, राधा जयमंत्री केवट, कृष्णा केवट, रंजू पाठक, सबीर आलम भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। गांव जखो से शंकु दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश, दीपक, पूजा और इनका पूरा परिवार, टीवी टावर नागपुर, महाराष्ट्र से नाना डोंगर देवी, रमाताई, दीक्षा, रीमा, राहुल और इनका पूरा परिवार, डाबरी रोड अकोला से सुशल्या देवी मंदुरकर, सदानंद कुमार, गौरव आरव और अर्पिता, सोहन जोशी, हरविंदर सिंह चावला, वीरेंद्र अग्रवाल, रानू, गीता श्रीवास, लक्ष्मी ध्रो, अंकिता पायल, आकांक्षा, रेहान, वैदही, हंसिका, जगदलपुर बस्तर से पूनम नायडू और स्मिता रेडियो फेसबुक लाइव शो ग्रुप भाटपार छत्तीसगढ़ से भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। सोंगा धमतरी छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार चंदन, सावित्री मोहित, देविका, गजेंद्र कुमार और हेयांश, खरसावा झारखंड से सुकरा नायक, मंजू नायक, जलेश्वर गौरव और इनका पूरा परिवार, ये हैं छत्री तालाब अमरावती से साधना और किशोर गुप्ता, शेरकोट बिश्नौर से नदीम बाकी, कलीम अलीम, अजीम अदीम, अब्दुल अलमीर, मोहम्मद जैन, जन्नत तीव्रता, डाबरी पाला जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से महेंद्र प्रताप मरकाम, जया जोगेंद्र, गजेंद्र मरकाम, मनीषा सुरेंद्र, मोहन और सहोदरी मरकाम, मनमोहन गिरजाबाई मरकाम और साथ ही ये हैं ग्राम पीपल लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति, शिवांश जनकपुरी, सहारनपुर से जॉन टिकिस्ट्रो, रोजी पर्ल, विलेस टिकिस्ट्रो, ये हैं अमर रमेश कुमार खत्री जो कि कराची से हैं और मास्टर किशन लाल खत्री, मोहम्मद अमीम, जफर सदीक, शेख शंकर गुल शर्मा और बिरानी वाले भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन, अमन, दीपांशु और इनका पूरा परिवार, शाहजी नगर देगलूर नादेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता, ये है ग्राम नादैल जिला बदायूं से फिरोज खान, नूरी, अरबाज, शहबाज और इनका पूरा परिवार, भाटोपारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरमिंदर चावला, लोकेश पायल, अंकिता, लक्ष्मी ध्रुव, वीरेंद्र, रानू, हंसिका, वैदही, जगदलपुर बस्तर से पूनम नायडू, खंडवा एमपी से अब्दुल गफ्फार डावर, गांव बड़वाला हनुमंता फाजिलका, पंजाब से विनोद मायल, सीमा, लक्षिता, यासिका, विधा देवी और इनका पूरा परिवार। और सुनते हैं आप सभी की पसंद का गाना एमएम किरावनी और पलक मुच्छल की आवाज, फिल्म का नाम बाहुबली।

और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली से प्रोग्राम आपकी पसंद, और आप सभी की पसंद का जो अगला गाना सुनेंगे वो है फिल्म दिल तो पागल है, फिल्म से लता मंगेशकर उदित नारायण की आवाज़। और इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं मोहल्ला ख्वाजा नगर कुंदकी से जाकिर खान, नाजिम खान, सुहेब अरीब, जिक्र नूर, हलीमा सादिया, मदरसा गेट भावपुर मुड़ियाओ जौनपुर से हैं, इशाद अहमद अंसारी, कामरान अरमान, नवेद अजरा तबस्सुम रायपुर अनेक जिला बनारस से, मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी नौरीन और आफिया, गुरमीत सिंह मेहता साउथ दिल्ली से हैं, मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन, शहनाज नवेद, सुहेल हसन, रसीद वारसी, अनम यशव अब्बासी, किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली और इनका पूरा परिवार, बीरमगाम गुजरात से हैं अजीत भावसार, प्रमिला भावेश और सनी भावसार। ये हैं विष्णु मस्कीन, रीतिका आरव, वानी मस्कीन परिवार, दयानंद कॉलेज भवानीपेट सोलापुर महाराष्ट्र से। राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हैं बलकनन वर्मा, अंजनी, ज्योति, प्रहलाद, बंटी, बबली वर्मा, कटरा चांदखां पुराना शहर बरेली से, मौर्य मंदिर से हैं राम रतन माला मौर्य और मुकेश मौर्य, प्रिंस प्रियांशी, पुष्पा गौरव, चंद्र प्रकाश और मन्नु भाई भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। ग्राम जेवरा हिसार से विरोध भयान, सूरन भयान, शमशेर मनोज भयान, सलार पहलगाम से हैं, कश्मीर से पैरजादा मिराजुद्दीन, नजम दीन, कैशर और इनका पूरा परिवार, गुजरात गांधी ग्राम से प्रवीण सोनी, कलावती और दत्ता ढोंडके, आष्टी जालना महाराष्ट्र से, भागलपुर उस्तू से प्रदीप कुमार मंडल, आशीष कुंदन, करीना, पूजा आरती और सुनीता, कासम कॉलोनी सनावर से

यूनुस खत्री, शफी इदरीश, नूरू मीना, इरफान और कासिफ मीना, फाजिलका पंजाब से, भूषण खेड़ा, विशु विशाल, लाडी खेड़ा, शालिनी टिमांशी और इनका पूरा परिवार भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हिम्मत सिंह राजपूत, दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि पारस मणि, पुष्पेंद्र और नोखे लाल, कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद, मोहिनी कल्पित, गर्वी हिमांश, ग्राम कुमार हेड़ा, सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना नाजिया और इब्राहिम, रेलवे रोड गंजे डुंडवार से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश, डॉक्टर दबीरुल, बेगम शबनम, फातिमा और सरिता गौतम, नई दिल्ली से कमलेश मुकुल, सचिन और दीपांशु, ये हैं आकली दीवान, एमपी से रामलाल चंद्रवंशी, कृष्णा, काजल।

सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद, मोहिनी कल्पित, गर्वी हिमांश, ग्राम कुमार हेड़ा, सहारनपुर से सैयद मसूर, शाइना नाजिया और इब्राहिम, रेलवे रोड गंजर डुंडवार से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश, डॉक्टर दबीरुल, बेगम शबनम, फातिमा और सरिता गौतम, नई दिल्ली से कमलेश मुकुल, सचिन और दीपांशु, ये हैं आकली दीवान, एमपी से रामलाल चंद्रवंशी, कृष्णा, काजल, मीनाक्षी, दिलीप चंद्रवंशी, गांव से दुबाला सूरतगढ़ राजस्थान से इंद्राज जानी, अंकुश और इनका पूरा परिवार, साथ ही कविता, मानसी अरोड़ा, गौरव, अनिल जो कि हैं नई दिल्ली मोती नगर से, यादव मोहल्ला सिनावत से दिलीप मालाकार, सुनीता, योगेश, मुस्कान, जितेंद्र मालाकार, सील वर्मा, ममता राजपूत, ऋषभ और मानवी वर्मा करेली बरेली से हैं, रामपुर रोड किला छावनी बरेली से प्रदीप कुमार पाल, नमन, पिंकी रिंकी, प्रिंकू, माही राधा और इनका समस्त परिवार भी इस गाने को सुनना चाहता है। नया पारा भिरई जिला बालोद छत्तीसगढ़ से बसंत सरोज, ईशर, पप्पू भाई ठाकुर और प्राची ठाकुर, पैराडाइज कॉलोनी अमरावती से सईद, सूफिया अनस एजा और सरोज चौक से कमरुला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, आफिया और इनका पूरा परिवार, रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया, ये है सुरेंद्र खुराना न्यू मुल्तान नगर दिल्ली से। सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम दिल तो पागल है, लता मंगेशकर, उदित।

0: हाय।
1: और ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर उदित नारायण की आवाज, फिल्म का नाम दिल तो पागल है। और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली से प्रोग्राम आपकी।

और आप सभी की पसंद का गाना सुनेंगे जो कि है फिल्म केसरी से अरिजीत सिंह और असिस कौर की आवाज़ में। और इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं। सुरेंद्र खुराना न्यू मुल्तान नगर दिल्ली से हैं, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये राधिका, अनिष्का और तन्मय, ग्राम लसूडिया तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ एमपी से गोविंद वैष्णव दिव्या सुमन कोमल परी कृतिका रमेश चंद डांगी, हिंगोली महाराष्ट्र से शाजी बोट के नंदा बोट के हनुमान और उत्तम जमदाडे, श्रीकृष्ण बाठे संदीप अमूल्य धाड़ी नादुरा महाराष्ट्र से, गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत संगीता तुषार और रिंकी, डॉक्टर बनवारी लाल जयपाल विमला सोनू ममता दिशा मोक्ष सुशांत विक्रम पूनम चालिया, श्री गंगानगर राजस्थान से ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी लालू मिस्त्री अंसारी मोहम्मद मुनाजिर अबरार हुसैन इस्लामुद्दीन अल्ताफ मुन्ना भाई और आशिक हुसैन कोलसिटी बरकाना से हैं, अफजाल ताज शाहिन सोनू तस्नीम कमल अफजाल मलिक गांव हीरावाली फसल का पंजाब से सुभाष गोदारा विमला इंदु पार्वती हिमांशु गोदारा गंजडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिलू परवेज बेगम इमराना नवाजेज दानिश अमन आफरीदी राधा नामदेव गांव चुरवाल जिला नवाशहर पंजाब से गगनदीप थानदी तृप्ता डॉक्टर प्रियंका डॉक्टर प्रशांत डॉक्टर प्रियम डॉक्टर वामिका और वाणी थानदी पद्मपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा ममता कीर्ति और भूमिका भी इस गाने को सुनना चाहती हैं। ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से हैं मोहम्मद रफीक पवार बेनजीर कौसर मोहम्मद साकिब अलमास बानो मोइन छोटे पवार शंकरलाल गंगराटे वनीता मोहम्मद हसनैन पवार और ये हैं काबरेल जिला हिसार हरियाणा से सुजीत विशाल इंदौरा छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार ग्राम चरौदा से नंदकुमार प्रमिला और प्रियंका गांधीनगर गुजरात से जीके परमा ज्योत्सना हर्ष दीपल और उर्वशी पारसमणी रेडियो श्रोता क्लब गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश डैरी मनीष खलीफों के बावड़ी से खुदाबख्श खलीफा रामदेवरा दिनेश चौहान मलोट पंजाब से राज शर्मा मीना योगेश मैंडी सौरभ शाइना और निमान शर्मा शनि बाजार कस्बा उगहते बदायूं से प्रभाकर गुप्ता अवदेश सचिन देव प्रियल कार्य और गौरी गंजडवारा से शमसुल कमर राही फातिमा अदनान फैजान अनु खान सागर लखना दौन एमपी से लाडला जी चौबे लाडली जी चौबे रिमझिम और सक्षम चौबे ये हैं आजाद रेडियो श्रोता संघ रजोखर बाजार अररिया बिहार से शरीफ आरजू गुड्डू रंगीला साथ ही स्मिता रेडियो फेसबुक लाइव ग्रुप भटपारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी हरविंदर चावला और ये हैं वीरेंद्र रानू अग्रवाल गीता श्रीवास लक्ष्मी ध्रुव अंकिता पायल जोशी आकांक्षा रिहान वैदही हंसिका जगदलपुर बस्तर से पूनम नायडू सोंगा धमतरी से छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार चंदन सावित्री मोहित देविका गजेंद्र और हेयांश वीरमगाम गुजरात से अजीत भावासार प्रमिला भावेश और सनी भावासार कुलीपाड़ा कटिहार से राजेश भारती रेडियो श्रोता संघ से विवेक रमन श्रोता संघ भारती नगर मुश्किपुर गोगरी जमालपुर से हैं और ये हैं दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा कोमल किरण कपिल कुनाल नई मस्जिद करेली से इंतजार हिबजा नूरी नथु चाचा नन्हे ठेकेदार साथ ही बारीलाल प्रजापति धनीराम नरेश रविन्द्र वृंदावन प्रजापति

जिला छतरपुर ग्राम सेवड़ी से है। एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण लव्या, आरव और एसके पप्पी, बड़ी कैबी चुराहा वाराणसी, अरुण कुमार मालवीय और ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां आजाद नगर लक्सर, हरिद्वार से ईदगाह से जिला बक्कार पंजाब से ये हैं रेहाना खान और हिंदुस्तान रेडियो मित्र से है ब्रिजेंद्र विश्वकर्मा, तारा सोनाली, सोनम और आशीष। और चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गाना और हमारे प्रोग्राम, आपके प्रोग्राम का, आपकी पसंद का ये जो गाना है वो अंतिम गाना है, लेकिन सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में। फिल्म का नाम है ये गाना जिसके आप सुनने जा रहे हैं, केसरी।

0: चढ़ना। और इसी के साथ आपकी पसंद यहीं तक।
1: चले मही तेरे पीछे पीछे चलना।
0: अभी आप सुन रहे थे आपकी पसंद, और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 FM पर। और अब लीजिए सुनिए सब रंग।

और आपको बता दें कि आज आकाशवाणी बरेली के प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में जो विषय है वो है जानवरों को जू में रखना कितना सही। इस पर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। रिकॉर्डिंग का जो समय है दोपहर 2 बजे, प्रसारण शाम 4 बजे किया जाएगा। फोन नंबर है 0585-1725-1700 या फिर आप अपनी राय हमें इस फेसबुक के माध्यम से भी भेज सकते हैं। फेसबुक पेज पर हमारे इस कमेंट में आप बॉक्स में लिखिए आपकी राय क्या है। आज का जो विषय है आपकी बात आकाशवाणी के साथ वो ये है कि जानवरों को जू में रखना कितना सही, और इसका प्रसारण आज शाम 4 बजे किया जाएगा। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली से, प्रोग्राम का नाम है सब रंग।

नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम झुमका गिरारे में और मैं हूं आपकी अपनी दोस्त नीतू। दोस्तों, झुमका गिरे तो बाजार में ढूंढ लेना, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर हमारे जंगलों की रौनक, हमारे बेजुबान वन्य जीव हमसे दूर हो गए तो उन्हें कहाँ ढूंढेंगे। जी हाँ, 2 से 8 अक्टूबर तक पूरे देश में राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसकी इस साल की बेहद खूबसूरत थीम है संबद्ध आवास समृद्ध वन्य जीव। आज का हमारा ये पूरा शो उन्हीं पर समर्पित है, उन बेजुबानों के नाम जो बोल नहीं सकते लेकिन दर्द पूरा महसूस करते हैं। और इसी सिलसिले में हम आज सीधे आ पहुंचे हैं देश के सबसे बड़े ICAR IVRI इज्जतनगर के सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ विभाग में। लेकिन वहां चलने से पहले चलिए मूड बनाते हैं, इस गाने के साथ आप भी सुनिए और गुनगुनाइए।

0: बिल्कुल दोस्तों, परिंदों और जानवरों की कोई जुबान नहीं होती, लेकिन उनके पास भी एक दिल होता है। इस वन्य जीव सप्ताह पर आकाशवाणी बरेली आपसे यही गुजारिश करता है, परिंदों की जुबान को समझना सीखिए, वे जुबानों के दर्द को बांटना सीखिए। झुमका गिरे तो बरेली के बाजार में ढूंढ लेना, लेकिन अगर कोई बेजुबान मुसीबत में दिखे तो उसकी मदद के लिए आगे जरूर आना। इस समय हम मौजूद हैं देश के प्रतिष्ठित संस्थान यानी कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ विभाग में और जानेंगे कि जंगल की राजा बाघ से लेकर हमारे आसपास के बेजुबान पक्षियों तक की सेहत का ख्याल ये विभाग कैसे रखता है। तो चलिए जानते हैं यहाँ के प्रभारी अभिजीत पावडे जी से। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: जी बताएं।
0: जी, तो देश भर में वन्य जीवों के इलाज के लिए आईवीआरआई का ये विभाग नेशनल रेफरल सेंटर भी है। हमारे श्रोताओं को आसान शब्दों में बताइए कि आपका विभाग वन्य जीवों के संरक्षण में क्या भूमिका अदा करता है।
1: हमारा संस्थान 132 वर्ष पुराना है और न केवल ये भारतवर्ष में अपितु एशिया में नंबर एक और सारे संसार में नंबर चार पर इसका स्थान है। इसके ये किसी प्रशंसा का मोहताज नहीं है, ये अपने आप में ही इसका कार्य बोलता है। सारे ही चिड़ियाघर, राष्ट्रीय उद्यान एवं संरक्षित जितने भी नेशनल पार्क है वहां के पशुओं का उपचार, वहां के पशुओं में होने वाले संक्रमित बीमारियों के लिए समय समय पर हम जो है उनको सुझाव देते हैं। वहां हुई मर्त्यता का पोस्टमार्टम शव विच्छेदन, जिसमें बहुत ही अत्याधुनिक अग्रिम ऐसे नैदानिक परीक्षण करने होते हैं, चाहे वायरल हो, चाहे लंपी हो, चाहे बर्ड फ्लू हो, इसमें सभी में हमारे वैज्ञानिक एवं सहकर्मी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और इसी के चलते हुए अभी हाल में ही दिल्ली के राष्ट्रीय चिड़ियाघर में एक सभी चरनी के दोनों पैर टूटे थे, जिसके प्लेटिंग द्वारा उपचार करते हुए यहीं की टीम जाकर मार्च 2026 में जिसे रिपेयर करके आई थी, वह आज चार पैरों पर खड़ी है। इसी तरह से तिरुवनंतपुरम में अजगर में पाए जाने वाले टीबी रोग का निदान तथा अन्य वन्य जीव प्रजातियों में भी इसका प्रसार हो रहा है, साथ ही साथ ये धीरे धीरे मानवों में

0: मोरेजिस नाम का एक जीवाणु आ सकता है, इसकी भी हमने संभावना व्यक्त की है। अभी हाल में ही कानपुर चिड़ियाघर में काले हिरनों में ट्रिपैनोसोमियासिस नाम की बीमारी आ रखी है, जिसकी वजह से हिरन अंधे होते हैं और धीरे धीरे 20 से 30 हिरनों की एक झुंड में मर्त्यता होती है, जिसके लिए हमारी टीम ने अभी उनको परामर्श दिया, जिसकी वजह से 3-4 ग्रसित हिरनों में सुधार आया है।
1: और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक डॉक्टर इंसानों की तकलीफ तो सुनकर समझ लेता है, लेकिन आप उन बेजुबानों का इलाज करते हैं जो बोल नहीं सकते, क्या इतने सालों के अनुभव के बाद अब आपके लिए उनकी भाषा या उनके दर्द को समझना आसान हो गया है?
0: बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। हाथी के पेट में दर्द है तो वो सूंड उठा के खड़ा रहेगा। अमूमन हाथी सूंड तब उठाता है जब अपने आए हुए जो प्रत्यक्ष दर्शी है उनको सलाम करने के लिए, पर एक बार उठाएगा, दो बार उठाएगा, लगातार उठा, लोट पोट पचाना, साथ ही साथ लंगड़ा के चरने वाले शेर, खाना ना खाना, उनके पेशाब एवं मल में आने वाले अजीब अजीब सी महक की वजह से हम उनका निदान कर सकते हैं।

0: डॉक्टर साहब, आपने हमें अच्छी जानकारी दी कि किस तरीके से आप पशु पक्षियों के दर्द को समझ लेते हैं और हम प्रकृति और बेजुबानों के हमें करीब भी लेकर आते हैं, यानी कि हमें शब्दों की नहीं बस एक संवेदनशील दिल की जरूरत होती है।
1: हाँ।
0: तो जो भी आपको सुन रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं ये कहना चाहूंगा कि ना केवल अपने इर्द गिर्द पक्षी गिलहरी इन सब का संरक्षण करें, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं, मानवता से ऊपर जाकर ये सेवाएं हैं। साथ ही साथ एक बात का ध्यान रखे, बेवजह बंदरों को खाना ना दे, ताकि कपड़े सुखाने वाली गई हुई महिलाओं पर बंदरों का झुंड जो है एकदम आक्रमण करे और उनको उस महिला को छत से नीचे फेंक दे, ताकि या तो उसकी मृत्यु हो जाए या तो उनके रीढ़ में चोट आ जाए। अनाप शनाप कूड़ा करकट तथा प्लास्टिक की चीजें घर के बाहर ना फेंके, रात को आने वाले जंगली सुअर इसको ले जा सकते हैं। जंगली सुअर के वाहन की वजह से वाहनों से होने वाले यातायात में बड़ी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। साथ ही साथ ये भी देखना है कि चील कौवे मांझे में ना फंसे और इनका ध्यान रखें।
0: बिल्कुल, यानी कि हमें प्रकृति का भी देखभाल करना जरूरी है,
1: उसको इकोसिस्टम कहते हैं, उसका संरक्षण करना, ये एक हर एक मानव की, क्यों कि यही कारण है कि मानव वन्य जीव संघर्ष शुरू होता है। हमने अपनी

0: इतनी बढ़ा दी कि हमको खाने पीने के लिए, रहने के लिए जंगलों में अवैध वन कटाई करके हम उसमें जाके बसने लगे। हमने वहां खेती करना शुरू कर दिया और फलस्वरूप अब तेंदुए शहर में आने लग गए, बाघ शहर में आने लग गए। और जीवो जीवस्य जीवनम जीवो जीवा जायते, यही प्रकृति का नियम है। किसी भी प्रजाति की बेशुमार बढ़ती हुई संख्या को रोकने के लिए प्रकृति स्वयं जिम्मेदार होती है, और उसी के चलते यदि रिहायशी इलाकों में वन्य जीव आके उत्पात मचाने लग गए, इसके लिए मानव स्वतः जिम्मेदार है।
1: तो बेजुबानों का दर्द समझने के लिए शब्दों की नहीं बल्कि एक बड़े दिल की जरूरत होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए।
0: धन्यवाद।
1: का दर्द समझने के लिए शब्दों की नहीं एक बड़े दिल की जरूरत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। चलिए श्रोताओं इसे प्यारे से संदेश के साथ सुनते हैं अगला गाना जो हमें याद दिलाता है हर जीव में एक जान होती है।

0: क्या बात है, इस खूबसूरत गाने के बाद दिल और भी ज्यादा संवेदनशील हो गया है। और बरेली वालों, आज के इस एपिसोड में हमने सीखा कि प्रकृति का संतुलन तभी बना रहेगा जब हमारे वन्यजीव सुरक्षित रहेंगे। इस राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह पर आकाशवाणी बरेली की ओर से आपसे बस यही गुजारिश है कि अपने आसपास के पशु पक्षियों के प्रति दया रखें। अगर कोई बेजुबान मुसीबत में दिखे तो आईवीआरआई के हमारे इन एक्सपर्ट्स या फिर वन विभाग की मदद जरूर लें। अब हो चला है वक्त आपसे विदा लेने का।
1: अभी आप सुन रहे थे झुमका गिरारे। इस समय आप सुन रहे आकाशवाणी बरेली 100.4 एफएम पर। और अब लीजिए सुनिए एफएम रेनबो।
2: आपके साथ आप सुन रहे हैं 100.7 एफएम रेनबो, सुरों का लखनवी एहसास।
3: साढ़े 11 बज गए भाई, 11:30, 47 सेकंड हो रहे हैं। आपकी सखी राखी आपके साथ है, प्रोग्राम चल रहा है संदेश आपके गीत हमारे, और आपके लगातार फोन कॉल्स और ईमेल्स हमें मिल रहे हैं 0522-223-8845, 0522-223-8852, यानी 2238-45, 2238-852, ये दो फोन नंबर्स हैं। और एफ एम आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com ईमेल आईडी है। फिलहाल वसीम खान जी हमसे जुड़े हैं टेलीफोन के माध्यम से। हेलो, नमस्ते वसीम जी, कैसे हैं आप?
4: हाँ साहब, ठीक है।
3: तो बताइए क्या हालचाल है और कैसा चल रहा है जीवन?
4: हाँ सर, प्रैक्टिस करते हैं, डॉक्टरी करते हैं देहात में।
3: जी तो आप ये बता रहे थे कि बारिश हो गई जो असमय।
4: हाँ तो वो तो जीवन साहब जो है, बारिश हो गई, सब फसल लेट गई, नुकसान हो गया। लेकिन आप क्या कहा जाए, सरकार जो है थोड़ा बहुत मदद भी नहीं करती है।
3: चलिए आप ये बताइए कि इस जब ऐसी परिस्थिति में होते हैं जहां परेशानी है, दिक्कत है, तो रेडियो कितना आपका साथ देता है, एफएम रेनबो का क्या रोल रहता है?
4: आप 12 बजे रेडियो जो है हमेशा दिन भर सुनते हैं।
3: जी
4: 12 बजे रात में बंद करते हैं।
3: अच्छा, तो फोन

0: आप बता
1: क्या
0: रहे थे कि
1: जवाब
0: आज
1: चाहिए
0: पहली
1: आपको?
0: दफा मिला है ना
1: जी
0: फोन? आप बता रहे थे कि आज पहली बार लगा है शायद आपका।
1: जी पहली बार मिला है और इसको मतलब 3-4-5 महीने से तो नंबर जो है हम डायल कर रहे हैं।
0: अच्छा
1: हाँ, लेकिन आज पहली बार लग गया।
0: चलिए, हमारी खुशकिस्मती है कि आपसे बात हुई और आपका फोन पहली बार लगा तो हम आपसे गुफ्तगू कर पा रहे हैं।
1: एक धन्यवाद साहब।
0: जी, और बताइए कि आज संदेश क्या देना चाहेंगे आप वसीम जी?
1: संदेश ये है साहब, बरसात में बीमारी बहुत फैलती है, लोग खाना पानी जो है ताजा खाएं और जो है मच्छरदानी लगा के जो है अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा करें। सर यही संदेश है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया वसीम जी, और इसी तरह आप जुड़े रहिए सुरों के लखनवी अंदाज के साथ। और 11:33 पर आज आपका कॉल लगा है, हमें बड़ी खुशी है कि आपसे बात हो रही है। इसी तरह जुड़े रहिएगा, ठीक है?
1: ठीक है साहब।
0: जी
1: हमारे यहाँ लखीमपुर खीरी में
0: हम्म,
1: जफर अली नकवी रेमबो स्टेशन से स्टूडियो खुलवाई
0: हम्म,
1: और हम लोग पूरा जो है फायदा नहीं पाते रहे।
0: अच्छा अच्छा जी, चलिए ठीक है, आप रेनबो से जुड़े हुए हैं, ये अच्छी बात है। और किसी भी परिस्थिति में हो, आपका ये कहना है कि रेडियो आपको आपके जीवन को थोड़ा उजाला देता है, ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए, धन्यवाद। तो भाई, ये थे वसीम जी, और इन्होंने बताया कि कैसे बारिश में फसलों को नुकसान हुआ, लेकिन तब भी क्योंकि पूरा दिन ये रेडियो से जुड़े रहते हैं तो एक संगीतमय सुकून इन्हें मिलता रहता है। नाजिम रेन की तरफ से मेल आया है जिसके लिए हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। प्यार दो प्यार लो, एक छोटा सा संदेश इन्होंने भेजा है। वकील अहमद ने गुड मॉर्निंग कहा है और ये लिखते हैं कि लोग वाहन बहुत तेज चलाते हैं, वाहन तेज नहीं चलाना चाहिए। मंसूरी कट का हथूरी जिला सीतापुर, साहिबा अंसारी, साजिया अंसारी, शमा परवीन, रिंकी पिंकी, महक अंसारी, गुलफशा सिद्दीकी, अहमद नवाब, सबको इन्होंने याद किया है। और ये बात सही है कि भाई इतनी स्पीड में गाड़ी चलाएंगे तो कंट्रोल करने में भी उतना ही मेहनत लगेगी, इससे अच्छा आराम से चलिए, सुकून से अपने गंतव्य तक पहुंचिए, खुद भी सुरक्षित रहिए, सड़क पर दूसरे लोगों को भी सुरक्षित रखिए। मोहम्मद अमीन बड़ेहा भरौली गंगागंज लखनऊ से लिखते हैं गुड मॉर्निंग, और इनका संदेश ये है कि जो लोग अपने बच्चों को देर तक मोबाइल देते हैं वो लोग ऐसा ना किया करें, क्योंकि न सिर्फ उनकी आंखें बल्कि उनका भविष्य भी खराब होता है। और बात तो बहुत सही कही है आपने, क्योंकि मोबाइल पर जो बच्चे, मोबाइल का एडिक्शन जिन्हें हो जाता है, जिनको लत लग जाती है, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बिना मोबाइल देखे या बिना स्क्रीन देखे कोई पर्टिकुलर कार्टून या कोई ऐसी चीज़ देख के ही खाना खाते हैं, तैयार होते हैं, वरना वो अड़ जाते हैं जिद पे। और माता पिता के लिए बड़ा आसान होता है कि भाई मोबाइल पकड़ा दो बच्चों को, तो वो व्यस्त रहते हैं तो वो उन्हें तंग नहीं करते। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मोबाइल तो बाद में जब बड़े होंगे तब वो इस्तेमाल करना सीख ही जाएंगे, लेकिन जो ये बचपन है उनका, उसका आनंद लीजिए, बच्चों के साथ बाहर जाइए, प्रकृति के गोद में कुछ अच्छा समय व्यतीत कीजिए, कुछ ऐसी एक्टिविटीज में उन्हें इन्वॉल्व कीजिए जहां पर वो कुछ क्रिएटिविटी सीखें, कुछ ऐसा सकारात्मक सीखें जो उनके व्यक्तित्व को एनहांस करे, जो उसके व्यक्तित्व को और सुंदर बनाए और निखारे। तो ईमेल्स भेजते रहिए और कॉल्स करते रहिए, संदेश आपके गीत हमारे कार्यक्रम चल रहा है, आपकी सखी राखी आपके साथ है यहाँ पर, और मैं यही हूं और आपके फोन कॉल्स का और ईमेल्स का कर रही हूं इंतजार। 100.7 FM रेनबो सुन रहे हैं आप, सुरों का लखनवी एहसास।

कभी कभी क्या होता है ना कि आप बजाना चाहते हैं गाना और चला जाता है बैकग्राउंड म्यूजिक। आज मेरे साथ वही हुआ। चलिए एक दूसरा गाना प्ले कर रहे हैं, ये भी बहुत खूबसूरत है। और मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ, तो गाना उदित नारायण जी ने अच्छा गाया ही है, जिसका म्यूजिक सुनकर आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल एक बेहतरीन नगमा आपके रेडियो सेट पर आ रहा है, उसके बाद हम बात करेंगे। अब एक कॉलर हमसे जुड़ी है, उनसे

0: की अमृत बाग ये 18 से 25 वर्ष की उम्र के बीच में चोड़ होती है और आपको देती है सिंगल या सीमित प्रीमियम भुगतान चुनने का विकल्प। LIC हर पल आपके साथ।
1: तो भाई आप सुन रहे हैं 107.7 FM रेनबो, सुरों का लखनवी एहसास, और 11:43 हो रहे हैं। लगातार आपके फोन कॉल्स मिल रहे हैं। आइए देखते हैं हमारे साथ फोन लाइन पर कौन जुड़ा है। हेलो हेलो।
2: दोस्त ऐसा हो जो हमें अपना बना सके, हमारे हर गमों को वो जान सके। दोस्त ऐसा हो जो हमें अपना बना सके, हमारे हर गमों को वो जान सके।
1: क्या बात
2: चल
1: है?
2: रहे हो तेज बारिश में हम, चल रहे हो तेज बारिश में हम, फिर भी हमारे आंसुओं को वो पहचान सके।
1: अरे वाह,
2: फिर भी हमारे
1: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर बात आपने कह दी। और क्षमा परवीन
2: जी, गुड मॉर्निंग।
1: वेरी गुड मॉर्निंग शमा जी, क्या बात, आपने इतना सुंदर शेर से आपने जो शुरुआत किया है ना, आपने आगाज किया है अपने संदेश का, बहुत ही बेहतरीन।
2: तो एक बार हम उतनी बिंदास आवाज से अपना एड्रेस भी बता दें।
1: बताइए बताइए बताइए।
2: जिला सीतापुर पचैनापुर मस्जिद के पास से क्षमा परवीन अंसारी बात कर रहे हैं, और सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम, मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपको भी मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम।
1: जी आपको भी मेरा प्यार वाला प्यार भरा वालेकुम अस्सलाम, नमस्कार।
2: मैम गुड मॉर्निंग, इतने दिनों के बाद क्यों आई है, बताइए हमको छोड़ के कहाँ गई थी।
1: नहीं आपको छोड़ते कहाँ आए, देखिए एफएम रेनबो तो लगातार आप तक पहुँच रहा है और आपकी आवाज भी।
2: आज बहुत दिनों के बाद आई हैं आप, हफ्ते दिनों नहीं महीने बिता के।
1: जी कुछ व्यस्तताएं होती है जैसे सभी के जीवन में होती है, तो लेकिन चलिए वी आर बैक फॉर गुड। और आज क्षमा परवीन की तरफ से क्या संदेश जाना है सब लोगों तक?
2: संदेश हमारी तरफ से आज का ये है कि दोस्ती करके दोस्ती ना तोड़े, दोस्ती निभाएं, किसी को अपनी बहन माने या भाई माने, रिश्ता बहुत ही प्यार से और अच्छे से निभाएं।
1: बिल्कुल, रिश्तों में जो मिठास होती है उस पर कांस्टेंट कार्रवाई करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि एक कोई रिश्ता बना लिया उसके बाद उसको भूल गए और जब जरूरत पड़ी तो फिर वो रिश्ता याद आया।
2: हाँ, जरूरत के टाइम याद आया, रिश्ता बनाया तोड़ दिया, ये गलत बात है।
1: जी
2: बहुत दुख होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, समय लें रिश्ते बनाने में, इंसान को परखने में, उसके व्यक्तित्व को पहचानने में, लेकिन एक बार अगर किसी को दोस्त कहा, भाई कहा, बहन कहा या कुछ भी रिश्ता आपने उनसे कायम किया तो उसकी इज्जत भी बरकरार रखें और जलवा भी बरकरार रखें, है ना
2: जी।
1: जी
2: मैम जल्दी आना प्रोग्राम करने, आपको सुबह से सुन रहे हैं, आपको बहुत अच्छा प्रोग्राम।
1: थैंक यू सो मच,
2: अच्छे सॉन्ग भी चला रही।
1: थैंक यू क्षमा परवीन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
2: आपसे बात करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा।
1: जी आज आपने मेरा दिन अच्छा कर दिया, उम्मीद करते हैं आपका भी दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। ठीक है, ओके बाय बाय बाय। और आइए देखते हैं किस किस ने हमें भेजी है ईमेल्स। तो एमके राज लिख रहे हैं राम राम, आपको भी राम राम। मुनीश कुमार राज हैं ग्राम भानपुर पोस्ट गोपालापुर जिला लखीमपुर खीरी से। और देखिए रिश्तों की बात हो रही थी, इन्होंने लिखा है प्यारी राखी बहन को सादर नमस्कार। तो प्यारे भैया तुम्हें भी सादर नमस्कार। कार्यक्रम लिख रहे हैं बहुत अच्छा इनको लग रहे हैं और सभी कार्यक्रम इन्हें अच्छे लगते हैं। मैम जी हमारा संदेश है कि बुजुर्गों को बातों को मानना बहुत जरूरी होता है। कल सुबह 8 बजे एक मजदूर लखीमपुर जाते समय तेज धार में बह गया, लोगों ने मना किया पर नहीं माना। दिल को छू लेने वाली दो लाइनें भी आपने लिखकर भेजी हैं। बुजुर्गों ने जो रोका तो समझो प्यार था उनका, वरना ठोकर के बाद तो हर कोई ज्ञान देता है। और कुछ साथियों के इन्होंने नाम लिखकर भेजे हैं, मुनेश कुमार राज, सतीश जी, कन्हैया लाल जी, सुनील कुमार श्रीवास्तव, राजकुमार भास्कर, लक्ष्मी राज, शिवम राज, राम बाबू राज,

वेशराज, माता प्रसाद एंड ऑल फ्रेंड सर्कल। तो बड़ी अच्छी दोस्ती निभाई आपने अपने साथ साथ, आपने सभी को अपनी ईमेल में शामिल किया। सुंदर संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए आ जाते हैं अब भैया मोनू सेठ की मेल पर। इन्होंने लिखा है, नमस्ते, राम राम। और इस समय ये शिवगढ़ रायबरेली में सुन रहे हैं। माता पिता की सेवा सर्वोपरि है, यही इनका छोटा सा संदेश है। आइए गाना सुनते हैं, उसके बाद आते हैं वापस।

इनके है आकाशवाणी का बरेली केंद्र 100.4 FM और सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ शीशपाल के साथ। साथियों, हमारा आज का विषय है जानवरों को जू में रखना कितना सही। इस विषय पर बहुत सारे श्रोताओं ने अपने विचार हमको लिख भेजे हैं और ये हैं हमारे नियमित श्रोता ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी जी। लिखते हैं कार्यक्रम पेश करने वाले को हमारी तरफ से आदाब। आदाब लाल मोहम्मद जी। आगे लिखते हैं कि किसी भी पशु या पक्षी को पिंजरे में रखना उचित नहीं है। जिसकी जिंदगी खुले वातावरण की उसको कैद नहीं करना चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति को जानवर पालने का शौक भी हो तो ऐसे पशु पालें जो आजाद हों, जैसे बकरी, डॉग, बिल्ली आदि। ऐसे पशु ना पालें जिनको कैद में रखना पड़े।